शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर गॉड whosoever is he। आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट दैट, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपने को तो पहचानिए, हु आर यू। सो हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई, उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं, जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन लिविंग एवरीथिंग वाज इन पुणे, गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 इयर्स। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही है। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होममेकर, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पांसिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड वैसा किया, थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो भी कर लेते हैं। So generally, I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. That's also a big blessing from that Almighty.
0: Wow. Thank you so very much. Thank you, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली पिछले दो सालों से, ढाई सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे खुशी होने लगी है कि आप जैसे प्रबुद्ध और समझदार लोग, इंटेलिजेंसिया हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन माय रेडियो टॉकिंग टू मी, और आप लोगों की जो बातें हैं वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, खैर एनीवेज, इस विषय में बात करते हैं जिस विषय के लिए आज हम आपको इन्वाइट किया है हमने। सो ललिता मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म क्या मतलब है इसका? व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
1: आध्यात्म, इट स्टार्ट्स विद समथिंग टू डू विद आत्मा। आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज द लाइफ फोर्स इन आवर बॉडी, एंड वी हैव टू ऑलवेज think inwards, that is adhyatma. Go inside you and अपने thoughts को समझना। बाहर एक समझ में आता है, लेकिन अंदर जो होता है वो हमको खुद समझना चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, that answers and all you will get from within you if you go into spirituality. For example, suppose somebody hurts you with their words or with their actions, instead of directly blaming them, ऐसा सोचो, उनके जगह में खड़े रहो और सोचो क्यों ऐसा कर रहा है, then you will get an answer for their behavior, and that keeps you in peace, शांति से जी सकते हैं। That is actually adhyatmic in my parlance. It may be different for different people. And it is just search peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी।
0: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्कस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम. तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैम मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ. मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू.
1: ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
0: आएगा,
1: पछतावा
0: आएगा.
1: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to, और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है, तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, why should I spoil my mood because somebody is telling that, I feel that. हर एक आदमी होने हो, that comes with some spiritual knowledge because you learn to be compassionate, you learn to be good in your words, deeds, everything, and most of the things, all these things we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher वो क्यों बोल रहे हैं. हम immediate react करना है, वो हमारा सोच है, not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी.
0: ओके, आई गेट इट मैम. प्लेन एंड सिंपल, आई एम रियली सॉरी, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज हियर विद माय मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई शुड जस्ट वेट. वेट अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी, और कपल ऑफ मिनट्स मे बी, कपल ऑफ डेज मे बी.
1: करेक्ट.
0: एंड देन समबडी वुड कम टू मी एंड सम सिचुएशन वुड हैपन वेयर द थिंग्स वुड एक्चुअली बी एक्सप्लेन्ड टू मी कि ऐसा एक्चुअली इस वजह से हो रहा था, अच्छा किया आपने रिएक्ट नहीं किया. दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी मैम, दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी. ये एक अच्छी टीचिंग मेरे को मिली. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
1: थैंक यू.
0: ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हमें बता दिया.
1: हाँ जी.
0: आपने तो इतनी प्यारी सी, खूब बड़ी सी जिंदगी जी, और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहां से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
1: अच्छा, अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ, इट कम्स
0: ओके,
1: कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच फैमिली यू आर बॉर्न इन टू। ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, इट मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन,
0: सॉरी,
1: बट इन माई केस इट स्टार्ट फ्रॉम होम।
0: ओके,
1: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे, एंड जनरली समीर जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि यू मस्ट नॉट हर्ट एनीबडी, यू मस्ट नॉट डू बैड टू एनीबडी, कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो। इट इज थॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल, बिकॉज व्हाट द एल्डर्स डू अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम दैट लुकिंग एट इट।
0: ओके,
1: तो वो सीख देख देख के हमने सीख लिया। इट इज जस्ट प्लेन सीखना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सीख लिया। फिर बड़े होते गए, देन वी रियलाइज देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन वी हर्ट के बाद में सॉरी बोल देते हैं। बट इन स्पिरिचुअल नॉलेज यू कम टू रियली सीरियसली थिंक ऑफ व्हाई वी शुड नॉट डू दैट, व्हाई वी शुड नॉट हर्ट, व्हाई वी शुड नॉट टेल अ लाइ, वो स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है। कभी कभी झूठ ना, अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है,
0: बोलना पड़ता है।
1: नहीं, वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंज रहा, सो दैट वाज एक्चुअली अ लाइव व्हिच लॉर्ड कृष्णा टोल्ड, बट समहाउ ही हैड टू मेक द पांडवास विन,
0: करेक्ट,
1: तो वो हुआ। तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ, इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच। ठीक है, बोल दिया। अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए। अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं, फिर वो लोग बुलाते हैं बेचारे कहाँ हो, ऐसे ही झूठ मूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं। बोलते देते हैं, बट वो गिल्ट होते हैं, क्यों यार बोलना, बोलना था ना देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना।

0: मालूम पड़ा। वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी? मॉम ने, मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
1: जी नहीं, जी नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है। सी, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफस्टाइल चेंजेस।
0: ओके,
1: अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है, शादी होने के बाद यू आर पुट इनटू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर, तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग। वो सब होता है, गुस्सा आता है, बट वी शुडंट शो अवर एंगर टू एनीबडी। वो तो सी, हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं, यू हैव टू एडियर टू सर्टेन प्रोटोकॉल्स आफ्टर मैरिज। तो प्रोटोकॉल बनते रहते, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। अंदर तो स्ट्रेस होता है ना, विच विल मेक यू अनहैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स, तो होता था। बट लेटर ऑन वी गॉट वन, हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहां एक योगा मास्टर था,
0: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
1: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम।
0: अच्छा, ओके,
1: कांदिवली वेस्ट में।
0: ओके,
1: वो वहां तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, एक्चुअली हेल्थ रीजंस के लिए गए, बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल। तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में। तो उससे स्टार्ट हुआ, फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा, उनके उस सच्चरित्र में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज। सो इफ योर थॉट्स आर क्लीन, देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। सो दैट इज हाउ आई केम इन टू दिस, एंड नाउअडेज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। Not that some, see, वो क्या होता है, कभी कभी books read करते हैं, but to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, then I adopt it. नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है रेडी, क्या हो गया। So that is continued.
0: All right, all right. I get it, I get it. This is certainly a beautiful, beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am jo hai yahan par hame apni life ki story bata rahi hain, lekin hum sab relate kar pa rahe hain ki kahin na kahin hum bhi wahin the, humne bhi wo saman dekha tha, samaj dekha tha, aasman dekha tha, pareshaniyan jheli thi, meditation kiya tha, somebody came into our life and then is tarike se humko samajh mein aaya. I get it. चलिए ललिता मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें।

0: मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोस्ट मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है. इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट सी इट इज सेपरेट. बोथ लीड फॉर पीसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, दोनों एक ही है. बट both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct, go to your mandir jana, havan jana, wo karna, ye karna, wo sab ek ek dharma wo bolta hai. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी. यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.
0: ऑलराइट जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज़ बताई है, दोस्तों देखिए मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहाँ पर बताता चल रहा हूँ. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूँ. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना हम कौन हैं, यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में, और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है. मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है. मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना. प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है. धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इंप्रेस हो गया और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच उनको लगा अपनी जिंदगी को शांत करना है, यार बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए, हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल, 1, 2, 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं.
1: ओके, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल. वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो. व्हाई डू आई वांट, वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए. Then, what gives you happiness? वो ढूंढो. किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा. तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस. उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन. मैं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस. मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर, स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन. ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है. यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वन गो. स्टार्ट एट बेबी स्टेप्स. अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट म्यूजिक. वॉट इज मेडिटेशन? इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग.
0: Okay.
1: हमारे गुरु जी सब क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज अपना श्वास, ब्रीदिंग. यू नीड नॉट सर्च फॉर ब्रीदिंग, अपने आप में ब्रीदिंग होता है. बट हाउ मेनी ऑफ अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर ब्रीदिंग? करते नहीं है. सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू अवर ब्रीदिंग? तो वो पहले सिखाते हैं पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट्स जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में. तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो. मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना, मैकेनिकल है. लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग, तो व्हाटएवर यू डू कॉन्सेंट्रेट एंड डू, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाट यू डू, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. तो पहला सवाल है हैप्पीनेस.
0: ओके,
1: वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा. स्ट्रेस मेक्स यू अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस गिव्स यू स्ट्रेस. तो हैप्पी हो जाएंगे. अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज डू व्हाट इज योर ड्यूटी. ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है. अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो. एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, थॉट्स इनटू इट, बिकॉज फॉर मी स्ट्रेस फ्री शांत लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Spirituality gives you that. It gives you concentration ability. So it is practical. You do, you will know it. We abhi sikha nahi sakte hain concentration. You have to do it. Baithe raho ek jagah mein. Kuch nahi, subah baitho, ek jagah mein baitho. How many breath you are taking in 1 minute? So concentration hai. So har job mein, har kaam mein, agar aap concentration ke saath karte raho, ऑटोमेटिकली विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा.
0: ऑफ कोर्स.
1: दैट इज द फर्स्ट स्टेप.
0: ठीक है मैम.
1: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी. अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए. ट्राई मींस ऑफ मेकिंग दैट मनी. फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है. उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है. कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा. तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा. मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा. आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक. दिस आर स्मॉल स्टेप्स विच before you really go into that spirituality, sit in one place and meditate for half an hour. In any family, one person cannot run away and do this, but आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में. उसमें करते रहो. So these are small steps. Concentration on one thing. Do everything with passion. अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना, देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना। हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए। अभी बैठे रहो आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा। इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है, रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल वो मूड आते हैं तभी वो लोग दे विल डू देयर बेस्ट। तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग। तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, अपने आप को मैं टाइम देंगे, आई वर्शिप माई सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट वॉट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी,
0: राइट
1: समीर जी, ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर ए यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। टू स्लोली स्लोली विथ स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, डू वॉट यू लव टू डू, इट इज हाफ एन आवर डे, पूरा दिन में आधा घंटा निकालो आप जो बहुत अच्छा लगता है, विच गिव्स यू हैप्पीनेस, डू दैट। किसी किसी को ऐसे चुपचाप एक कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ न करेंगे, उनको आराम मिलता है, दे फील फ्री, स्ट्रेस फ्री, वो भी करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो दैट इज हाउ इट बिल्ड्स।
0: ओके, ऑलराइट, आई गेट इट। सिंपल मेथड है, उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स अवर थॉट प्रोसेस इजी, सिंपल एंड क्लियर। जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए। इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ, अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ एंड देन डू व्हाट यू लाइक, मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज़, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट। मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू,
1: एब्सोल्युटली
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू देम, लर्निंग समथिंग न्यू।
1: So, and also, yeah. समीर जी मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है, उसने बोला अम्मा आप करोगी ये, मैं बोली हाँ बिल्कुल करूंगी, एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया, फिर बाद में आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज़ क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए। एंड अनदर थिंग लैंग्वेज, देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा, सर ओके होता है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड। सचमुच समीर जी आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ मैं।
0: वाओ थैंक यू। अच्छा मैम सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट, हो गया।
1: एब्सोल्युटली
0: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया, ओके आई एम डन, थैंक यू। चलिए
1: थैंक यू
0: मैम, थोड़ा सा रुकते हैं, विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल काम पीसफुल भजन, विल कम बैक।
1: श्योर।

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तीन चार प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट. मेडिटेशन, ध्यान. ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाएं, वो भी एक आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है. सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम. एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है. एक्चुअली इट इज प्रेयर. प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विद योर गॉड. अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है. यू ऑलवेज टॉक टू द लॉर्ड इन योर कंफर्ट लैंग्वेज. अभी माय मदर टंग इज तमिल, बट भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं.
0: वाओ, ओके.
1: गॉड गिव मी दिस, गॉड होप एवरीथिंग गोज वेल, इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है. बिकॉज एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, तो वो भाषा आता है. एंड वी हार्डली वी रियलाइज भगवान का भाषा क्या है. डज भगवान हैव अ भाषा? नो. वी जस्ट पुट अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स, सब भगवान के पास. व्हेनेवर वी गो टू द लॉर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिफोर, सी स्टेज कम्स व्हेन फर्स्ट यू थैंक द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग.
0: करेक्ट.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, यू गो ओनली फॉर आस्किंग समथिंग. बच्चे लोग परीक्षा में इजी पेपर आना चाहिए, पास होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए. वी ओनली कीप आस्किंग. सो प्रेयर इज जस्ट टॉकिंग टू द लॉर्ड, गिव योर फीलिंग्स टू द लॉर्ड, वो है. एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा. एंड ही विल वर्क टूवर्ड्स इट, शांति देगा. एंड वी गेट दैट पीस, दैट कॉन्फिडेंस दैट भगवान हमको ठीक करेगा. That is prayer. You ask the Lord. He is just like a bichare. So, वैसा है भगवान के साथ बात करना. The conversation with the Lord is prayer for me.
0: Okay.
1: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर.
0: Okay.
1: मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं. वी सर्च व्हाई दीस थिंग्स हैपन, व्हाई वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. एंड देन वी ओनली ऑफ माइंड व्हेन वी मेडिटेट, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वन थिंग. अभी हमारे मन बहुत चंचल होता है, वो एक बार अमेरिका में होता है, अभी इधर होता है. तो इट इज अ वेरी वेरी चंचल बोलते हैं ना, यू कैन फिकल. बट If you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
0: Okay.
1: So slowly, slowly, it will go on increasing.
0: Mm-hmm.
1: Meditation, aaj 5 minute karo, 10 minute karo. But it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But dono alag tarike hain jo shanti khoj karte hain na, jo shanti. Abhi prayer na, aaj subah mein pray karo. दोपहर में जाके झगड़ा भी कर सकते हैं. होता है.
0: ओके.
1: इन मेडिटेशन पीपल हु आर रियली मेडिटेटिव स्पिरिचुअल वो नहीं करेंगे. अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है उनमें. तो उन लोग कितना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे. प्रेयर में ऐसा नहीं होता है. सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है. प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में
0: झगड़ा करेंगे.
1: नॉर्मल लाइफ दे विल बी. बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट. इट इज अ मच मच डीपर थिंग. बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है. एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ये है लाइफ चेंज.
0: ओके.
1: इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्रेयर इज मोमेंटरी. अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो. इट इज मोमेंटरी. अभी खुश होते हैं, दो दिन खुश रहते हैं. देन यू विल नीड दैट सेम भजन एंड कीर्तन एंड प्रेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति. मेडिटेशन इज नॉट दैट. अंदर से आता है ना, तो अब अंदर से ठीक हो जाएंगे. यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी. दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर.
0: ओके, अमेजिंग. फाइन, गुड. अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है. कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मैनी थिंग्स. और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं. मेडिटेशन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड. मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर. तो वी यूज टू लिव इन, वेल, इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे. तो वहां पर एक टेम्पल था. सो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेम्पल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर. वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था. वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब बड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको. सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड. वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग. तो मुझे अभी
1: करेक्ट. और समीर जी ये बोलो, जब ना वो शांत हो जाएगा,
0: राइट,
1: सो ही दैट इज द मीडियम ऑफ letting out.
0: Correct.
1: वो है.
0: That's the beauty. अभी मेरे को समझ में आ रहा है. Oh God, amazing. That's so beautiful. तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं, and then we will come back to Lalita ma'am here.

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहां तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडीइंग अवर सेल्फ, हाउ वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर व्हिच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, so that atma is a life force,
0: okay, okay,
1: within a body life is there, when the atma leaves there is no life, so it is just a life giving force which moves from one body to another body, so it, as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
0: Oh, okay,
1: so wo jab it will decide when I can leave this body. अगर वो decide कर लिया ये time में मैं body छोड़ दूँगा, so it will go and that person is no more.
0: Okay.
1: सिर्फ body रह जाता है, आत्मा चले जाता है. But it will never die. It will search for another body.
0: Oh, all right.
1: So आत्मा है. That is आत्मा. It is a life force with which every body moves, it runs, it works, it operates. That is आत्मा.
0: I get it. I get it. सच में मैम ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ, आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर, इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट?
1: Correct.
0: So I'm really happy that Sameer Goyal will always live.
1: Yes, definitely. Sameer Goyal will live.
0: Wow.
1: But with another name. Sameer Goyal's Atma will live with another name, okay, and another body.
0: Good. तो दोस्तों टेक दिस मैसेज, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, आत्मा हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू डाई, यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी हियर। अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा। ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड। ललिता मैम बहुत बहुत आभार है आपको, साधुवाद, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल तरीके से आपने हमें चीजें बता दी, थैंक यू।
1: तो आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई, दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी, आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम, एंड सो हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू समीर जी, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर ऑलवेज,
0: थैंक यू मैम।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे,

एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स, मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई, आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, एमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड, सब रेडी हो गए। वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमाटोग्राफर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों, अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना? और वही सबने बोला, ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए, आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन, सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा। लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। एक साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म। और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता, वो एक साल सिर्फ इंतजार था। और फिर एक मिरेकल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी। लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं।
और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था। और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों रिलीज के बाद क्या हुआ, लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों डिफरेंस क्या था, फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता, ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं, आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया, दो लोग बोलते हैं नो और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इस पे आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता, आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट। ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं।

एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हाँ, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है। और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है, ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पायनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी। और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है। और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सॉल्यूशन, क्या करें, क्या करें, क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा,

0: एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर, किशोर कुमार जी से लेकर, रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा। और दोस्तों, यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन, जस्ट बीइंग नेचुरल। और उस जमाने में ना फिल्टर ना ऑटो ट्यून, सिर्फ प्योर अनफिल्टर्ड टैलेंट। दोस्तों, आज जब आप कोई गाना सुनो ना, तो सिर्फ सिंगर को याद मत करना, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने कंपोज किया, किसने चांस दिया, किसने रिस्क लिया और किसने पर्दे के पीछे रहकर हिस्ट्री लिख दी। क्योंकि हर आवाज जो सुनाई देती है ना, उसके पीछे एक और आवाज होती है जो कभी सुनाई नहीं देती, बट जिसके बिना वो कहानी अधूरी होती है, वो आवाज अधूरी होती है। इसी के साथ आज का ये सोलफुल, म्यूजिकल और दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक के लिए गाने सुनते रहिए, गुनगुनाते भी रहिए और महसूस भी करते रहिए।
1: ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी, कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन एक्टिव, रिप्लाई इनएक्टिव। ऑनलाइन ग्रीन डॉट फुल ऑन है पर रिप्लाई जीरो। ऐसे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, सोच के रिप्लाई डिले करते हैं।

पादुकों ने। नाम सुनते ही एक ही कहानी, एक ही चेहरा सामने आता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं, अगर मैं बोलूं पादुकों ने तो आपके दिमाग में कौन आता है? जी हाँ, मुझे पता है आप सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दीपिका पादुकोणे, द ग्रेसफुल ब्यूटिफुल सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी नहीं, आज की कहानी है एक और पादुकोणे की, जो स्क्रीन पर कम दिखे लेकिन सिनेमा के दिल में हमेशा बस गए। एक ऐसा नाम, गुरुदत्त, जिनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोणे। और बिलीव कीजिए, इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर कोई उसे लिखता और उस पर फिल्म बनती तो लोग कहते ओवर फिल्मीनेस हो गई भाई। लेकिन ये सब कहानी नहीं, उनका जिया हुआ सच है। सीन वन, एक अजीब सी मुलाकात। सोचिए, एक फिल्म सेट है, दो यंग लड़के, दोनों नए, एक एक्टर दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फॉर्मल सी बात हो रही है, हेलो हाय कैसे हो, द फॉर्मल एक्सचेंज। और फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो दोनों एक साथ रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। क्यों? धोबी ने कपड़े उल्टे दे दिए थे, उनकी शर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी और बस दोनों हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में बदल गई और फिर एक प्यारा सा हग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इतनी सिंपल गलतियों से शुरू होती हैं। एक प्रॉमिस जो हिस्ट्री बन गया, उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। एक्टर बोला, कल को अगर मैं प्रोड्यूसर बना तो तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर बोला, कल को अगर मुझे डायरेक्शन मिला तो मेरी पहली फिल्म का हीरो तू होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ऐसे प्रॉमिसेस हम सब करते हैं, भाई तू सेटल हो जा फिर देख, कल को बड़ा आदमी बनना याद रखना। लेकिन कितने लोग निभाते हैं? दोस्तों, इन दोनों ने ये प्रॉमिस निभाया और वो एक्टर कौन था? गेस कीजिए, सोचिए सोचिए, द ग्रेट देवानंद। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? खैर, इसमें कोई गैसेस नहीं, हमारे अपने द ग्रेटेस्ट गुरुदत्त साहब और उनकी फिल्म बाजी। और रिजल्ट ऑफ कोर्स एक ब्लॉकबस्टर। देवानंद सुपरस्टार बन गए और गुरुदत्त एक लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े। मैजिक ऑफ टीम वर्क इसे कहते हैं दोस्तों। गुरुदत्त सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे जो लोगों को पहचानते थे, टैलेंट को समझते थे और फिर एक ड्रीम टीम बनाते थे। एक दिन शूटिंग चल रही थी, एक सीन था और गुरुदत्त को वो पसंद नहीं आ रहा था। वो डिस्कशन कर रहे थे, ये सीन वीक है, प्रॉब्लम्स हैं, खराब है, सही नहीं जा रहा। तभी एक यंग लड़का जो बस सेट पर था आगे आता है और बिना परमिशन अपनी बात बोल देता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली क्या होता है हम सब जानते हैं, कौन हो तुम भाई, चुप रहो। लेकिन गुरुदत्त ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुना और सिर्फ सुना ही नहीं, समझा। और वो तुरंत बोले, तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म लिखोगे। वो लड़का था अबरार अलवी। और फिर जो फिल्म्स आई वो हम सब जानते हैं कि सिनेमा के आर्काइव्स की जेम्स थी और आज भी हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद और साहेब बीवी और गुलाम। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं, जैसे मैंने कहा, ये इमोशंस हैं, क्लासिक्स हैं, हिस्ट्री है। अब सुनते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप के बारे में, वीके मूर्ति जी, एक यंग सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने एक टेक्निकल शॉट सजेस्ट किया और उसे एक ही टेक में परफेक्ट कर दिया। गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और फिर हिस्ट्री बन गई।
दोनों ने मिलकर इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक विजुअल्स क्रिएट किए, जैसे वो सन बीम शॉट, जी हां कागज के फूल का वो लेजेंडरी क्लाइमैक्स, प्यासा जहां गुरुदत्त की सिलहूट लाइट के अगेंस्ट होती है, एक सिंबल बन जाती है, एक फीलिंग बन जाती है। दोस्तों ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग्स थी रोशनी और अंधेरे की, ब्लैक एंड व्हाइट का जादू। आज हम कलर सिनेमा के आदि हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में इतनी गहराई से क्रिएट करना वो आर्ट था, लाइट और शैडो का खेल था, इमोशंस को बिना डायलॉग के दिखाना, ये सब गुरुदत्त और उनकी टीम ने मास्टर किया। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी है उन दोस्तियों की, उन ट्रस्ट की और उन टैलेंट्स को पहचानने की। एक धोबी की गलती, एक छत पर मिलना, एक अननोन राइटर की हिम्मत और एक सिनेमाटोग्राफर का आइडिया। एक इंसान जो सबको चांस देता गया और एंड रिजल्ट लेजेंडरी। आजकल हम क्या करते हैं, रेज्यूम चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं और फिर बोलते हैं देखेंगे अभी वैकेंसी नहीं है। गुरुदत्त क्या करते थे, टैलेंट देखा और सीधा चांस दे दिया। अब जब आप पादुकोने सुनो तो सिर्फ एक नाम याद मत कीजिएगा, एक कहानी याद करिएगा, एक जर्नी याद करिएगा और एक इंसान को याद करिएगा जिन्होंने सिनेमा को फील करना सिखाया। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक के लिए अपने आसपास के लोगों को देखिए, हो सकता है आपके पास भी कोई नेक्स्ट गुरुदत्त हो, बस आपको पहचानने की देर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: एक बार और सोने वाला, अलार्म बजता है उठता नहीं, दूसरा अलार्म इग्नोर, तीसरे अलार्म के बाद बस 5 मिनट और वो 5 मिनट सीधा 1 घंटा बन जाता है। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।

0: थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है हाथी।

0: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष धीरा घोष, अनुपमा मेघा, दीक्षा संस्कृति राशि और अनुराग, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
4: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
5: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को

0: पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने एक बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए एक काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे? दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।

जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: से पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाल प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: मंगल पांडे।
6: सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी, कहानी जे है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देश भगत था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी।

0: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
1: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
0: हाँ पूछो।
1: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
0: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
1: अच्छा।
0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: मंगल पांडे
0: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
8: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो,
8: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: देखो ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल,

या के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

टोकरी में सो रहा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है देवेंद्र।

0: आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
2: माँ माँ।
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
2: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
0: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
2: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
1: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
3: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
4: Send your bill for any internal damages.
5: Oh, thanks.
2: ये देखो दीदी, ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
2: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
2: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
2: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
0: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ। कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
6: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
7: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
7: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ? ये क्या है? अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
1: छोड़ दो।
2: मुझे मत मारो।
1: कुछ मत करो।
2: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम।
6: जल्दी,
2: याद नहीं कहाँ रखी है।
7: अरे बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे बात को छोड़ो।
1: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: हाँ।
1: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
1: हेलो।
8: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा पापा।
8: हाँ बोलो बेटा।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
8: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
8: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसाए हैं, बचाओ।
3: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की।
9: पकड़ो इनको।
3: इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
9: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
0: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
10: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
9: देखो ना सबकी जान बच गई।
0: बहादुर है मेरी बच्ची।
3: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

0: वालों को ये डर था कि प्याज उसे रुलाएगा, आंखों में आंसू लाएगा। आलू कचालू को ये डर था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
3: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
2: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोइनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा का।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुख की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुख।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए।
0: हाँ,
1: अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ।
1: तो भी ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: चुप्पन, अरे ओ चुप्पन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो चुप्पन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगाकर ले आ।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप तब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे, पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर, युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
1: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोझा,
0: जाती
1: नहीं तो ठंड लग जाएगी।
0: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो। माँ माँ वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
2: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
1: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
0: माँ जाती हूँ।
3: इधर से आइए जी।
4: जी
3: आइए आइए
4: जी,
3: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: बोझा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
1: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
3: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है, कौन कौन आया है?
1: मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, ऊपरले शहर के कई बड़े बड़े मकान और हवेलियाँ उसकी निगरानी में बने हैं।
3: हाँ हाँ याद आया,
1: वो भी यहाँ है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, आप स्वयं बात कर लीजिए।
3: हाँ हाँ ठीक है, बुला ला।
5: आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं?
3: हाँ इरादा तो है, अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं, अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूँ।
5: जी
1: हाँ बेटा
3: जी,
1: ये मेरे पति हैं, व्यापारी शिमुख।
5: नमस्कार।
3: प्रसन्न रहो। अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है।
5: जी सब मातृ देवी की कृपा है।
3: अच्छा देखो, स्थान तो तुम्हारा देखा भला ही है।
5: जी।
3: उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट फूट गया है, उसे पक्का करवाना है।
5: जी।
3: उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी न हो।
5: जी।
3: मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है, ऊपर की मंजिल पर कम से कम 2 नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों।
2: और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो।
3: लो भाई हमारी लाडली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना, बंद कमरे में इसका दम घुटता है। हा?
5: जी मैं समझ गया, काम कब से शुरू करना है?
3: जब से तुम चाहो, कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना, 2-4 दिन में ही सब मंगा दूंगा, बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना।
5: जी बहुत अच्छा, मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया।
3: अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया भाई उदंग, ये मेरी बेटी है बोधा, और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी है उदंग।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार। लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना? सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं।
5: हाँ ये तो ठीक ही सुना है आपने,
2: पर एक बात बताइए, जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है, तो वो जहाज कीचड़ में धस नहीं जाते?
5: नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है, ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है।
2: ओह।
5: तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं।
2: तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया?
5: दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते, हमारे यहाँ सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
2: अच्छा।
5: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं, फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके।
2: और क्या क्या है आपके लोथल में?
3: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
1: जरा सुनिए,
3: क्या बात है?
1: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उससे मिलेंगे नहीं?
3: हाँ हाँ, लेकिन उदंक
1: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
3: अच्छा बोधा।
2: जी पिताजी।
3: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
2: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
5: हाँ चलिए।
2: अच्छा लोथल में तो बहुत कुछ है।
5: साफ सुथरा रखते हैं।
2: अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
5: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
2: अच्छा
5: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
2: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
5: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
2: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
5: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
2: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
5: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
2: क्या मालूम।
3: बोधा, अरे बोधा तुम यहाँ हो, हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
5: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
3: अच्छा अच्छा, आप मात्री देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चलें।
5: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप।
3: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
5: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
3: क्यों आप इस चिलफिरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
2: पिताजी,
3: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
5: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
3: फिर तो हो चुका विवाह, अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
5: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए मुझे ही लीजिए, मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
3: यानी आप विवाहित नहीं है?
5: नहीं।
3: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
5: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
3: ओ, अच्छा अच्छा
5: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
3: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे?
5: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
3: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
2: पिताजी।
3: अरे बोधा की माँ इधर सुनो तो।
2: क्या बात है?
3: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
2: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
3: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
2: क्या सच? क्यों बोधा?
3: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
2: मातृ देवी की कृपा है, चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ। आओ बेटा आइए।

कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहरेन माना जाता है।

चालू ने मिलाया हार। दोनों दोस्त बने खेलने लगे एक साथ। आलू का चालू और प्याज हमें

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत

0: ये है मुझे परेशान करने की सजा।
1: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: तभी तपाक से बोली पहेली।
1: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
0: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
1: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया,
0: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: जन
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
3: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
0: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए डॉक्टर।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
4: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
4: जी
3: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: बताइए डॉक्टर साहब।
4: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
3: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
3: अच्छा।
4: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: अच्छा। जी रात की 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
4: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
3: जी
6: तो मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी बताइए।
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
3: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
8: किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टंट्या भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से।
9: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टाटिया भील रेडियो को सुनता हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
10: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
8: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बकरी पालन के ऊपर। तो किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। उनके खान पान को हमें किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे हमें उनका कौन से वातावरण में उन्हें हमें रखना चाहिए, साथ ही जानेंगे उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी दवाइयां हमें उन्हें देनी चाहिए और कैसे रखना चाहिए, इन सब का ख्याल तो जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में।
11: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं।
12: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपने आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
11: जी।
12: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
11: जी।
12: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
11: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे, जो क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो।
12: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
11: जी,
12: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहाँ की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
11: जी।
12: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
11: जी,
12: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
11: जी,
12: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
11: जी,
12: ये अति उत्तम है।
11: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं।
12: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
11: जी।
12: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20 25 50 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
11: जी,
12: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
11: जी।
12: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
11: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है, आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान हैं, दर्शक हैं, किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं।
12: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
11: जी,
12: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
11: जी।
12: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें। अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
11: जी, बिल्कुल,
12: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
11: जी।
12: जैसे कि ये जो है, इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
11: जी।
12: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
11: जी।
12: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
11: पहचान इसके हम कह सकते
12: हैं। ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
11: बिल्कुल,
12: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं उनकी अलग अलग पहचान है
11: जी।
12: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें, जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
11: बिल्कुल,
12: तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरे के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों
11: जी।
12: दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
11: जी।
12: और हम आमतौर पे 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
11: जी।
12: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
11: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
12: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है
11: जी,
12: तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियाँ हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
11: जी।
12: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज़्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
11: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी हो, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
12: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
11: जी।
12: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं। क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
11: जी।
12: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हो
11: जी।
12: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
11: जी।
12: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आएं
11: जी।
12: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
11: जी।
12: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज़्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
11: बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं। लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। जो शेड है वो बनाई गई है, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
12: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
11: जी,
12: कि जो नर और मादा हैं उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
11: जी।
12: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की छः से बारह माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
11: जी।
12: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
11: बिल्कुल। और जिस शेड में अभी हम हैं, ये कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
12: ये जो इस शेड में जो बकरी है ये आप देख रहे हैं, ये सभी छह से नौ माह की हैं
11: जी।
12: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना भूसा चारा दिया जाता है
11: जी।
12: और जब ये बकरी दस माह की हो जाएंगी
11: जी,
12: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
11: जी।
12: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है, स्ट्रेस शो करती है
11: जी,
12: तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
11: जी।
12: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
11: जी,
12: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
11: जी।
12: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
11: जी,
12: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए,
11: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
12: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
11: जी,
12: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
11: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम, वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है? क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है?
12: देखिये, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
11: जी,
12: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है
11: जी।
12: जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
11: जी,
12: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
11: जी।
12: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
11: जी।
12: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
11: बिल्कुल।
12: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं। अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200 से 250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
11: जी,
12: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16 18 किलो है।
11: बिल्कुल।
12: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है, इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
11: जी।
12: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं
11: जी,
12: तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
11: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है? हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
8: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आप सुन रहे थे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आपने जाना कैसे हमें बर्बरी बकरी का पहचान करनी चाहिए, उनके लिए कैसा बाड़ा बनाना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आदि जानकारियों को आपने जाना, और भी हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
2: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
1: जी,
2: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
1: जी।
2: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए
1: जी,
2: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए, उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती है
1: जी।
2: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
1: बिल्कुल
2: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं
1: जी। बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
2: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सुबबूल है, मलबेरी है
1: जी।
2: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं, और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं,
1: बिल्कुल,
2: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
1: जी,
2: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
1: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर संभावनाएं जो है वो काफी हैं, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा।
0: किसान साथियों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान से भी आप बकरियां ले सकते हैं, वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं कैसे हमें बकरी पालन करनी चाहिए, साथ ही आपको उन्नत किस्मों की बकरियां भी वहां पर उपलब्ध होती है। आइए मिलते हैं किसान से और पूछते हैं कैसे हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरी ले सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आइए सुनते हैं
1: कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
3: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई, और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ, और कम टाइम में कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
4: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाज़ार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं, और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
5: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला, और 10,000 से लेके 20,000-25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे, एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ।
0: जी,
1: हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये एक और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं हमारे संस्थान में, डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसे कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुँचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं जिसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, उसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, उसमें मुख्य गुण कुछ ऐसे है जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके।
0: जी,
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है। इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है,
0: उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक है, यानी हमारे जो किसान है, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर आगे बढ़े?
1: देखो, अब यहाँ सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे।
0: जी,
1: अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है कीवी के हैं, किसी जो है विज्ञान केंद्र है, वहाँ तक हम पहुँचाते हैं, और ताकि वहाँ पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
2: किसान साथियों, आपने बकरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। साथ ही आप लोगों ने जाना कैसे बकरी पालन हम कम से कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं और उसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। किसान साथियों, बकरी पालन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।

0: भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51,20,00,000 थी, जो 2019 में 53,57,80,000 हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है, मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है, ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस के साथ साथ खाल, बाल और रेशों का भी व्यवसायिक महत्व है। इसके अलावा मैंगनी व मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह की प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इनके आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25% से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे चेचक। ये विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है जो सांस लेने या त्वचा के घाव के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण 2 से 7 दिन के अंदर सामने आते हैं, जिसमें पशु के शरीर का ताप बढ़ता है, नाक और आंख से पानी निकलता है, पशु के मुंह, थन और पूंछ के नीचे के हिस्से में छाले निकल आती हैं। इस बीमारी में स्वस्थ पशुओं को बीमार बकरियों से अलग रखा जाता है। छालों, घावों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गुनगुने पानी से साफ करना होता है। साथ ही दवाओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए। निमोनिया, पानी में भीगने, ठंड लग जाने, अचानक मौसम के बदलने से सर्दी जुकाम के कारण निमोनिया हो सकता है। जुकाम पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसमें बकरियां कमजोर हो जाती हैं, खाने में आरुचि, कब्ज की शिकायत और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके अलावा तापमान बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बकरियों को ठंड लगने से बचाएं, उनके रहने का स्थान सूखा व साफ रखें और निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। खुरपका मुंहपका रोग एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। बकरी सहित सभी खुर वाले पशुओं को ये रोग हो सकता है। इस रोग में पीड़ित पशुओं के मुंह व पैर में घाव होना सबसे पहला लक्षण है। साथ ही पशु को तेज बुखार आ जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ता है, जीभ पर फफोले निकलते हैं जो कि बाद में फटकर घाव बन जाते हैं। इसके कारण पशु कुछ खा नहीं पाता। वहीं खुरपका में खुरों के बीच घाव हो जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। इन रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

गांव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज्यादातर बचपन से लेकर 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो जिंदगी देखते हैं कि खराब है, बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, वो घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाते, और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो दो पैसे ज्यादा कमाए, तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में जिंदगी जी रहे हैं।

जब इसमें आए तो एक साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे, उन्होंने इतनी हेल्प करी और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी और उसमें बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ कम से 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं।

सबसे पहले हम 2007-08 में एक लेजर लेबलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी कर रहा है, पर अब हमारे गांव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले, उसका करीब 30-35% पानी की बचत है। साथ साथ में पहले छिड़कवा विधि से गेहूं बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं, तो उससे पैदावार में भी फर्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और यील्ड में भी फर्क पड़ा है।

0: साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फर्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 कुंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें 80 कुंटल बिक गया, 20 कुंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है। उसको हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिए।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम। किसान साथियों आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बकरी पालन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने उन्नत किस्म की कौन कौन सी बकरियां होती है, कौन सी बकरी का दूध हमें फायदेमंद होता है और कैसे हम बकरी पालन कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों के समय हमें बकरियों का उचित इलाज करना चाहिए और कौन से वातावरण में हमारी बकरी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, बकरी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साहब भाइयों अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट RJ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। लेकर आई हूं एक और इंस्पायरिंग कहानी जिंदगी के रंग गीतों के संग में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना दिया और नेचर को अपनी पहचान बना दिया। हैंडमेड केमिकल फ्री स्किन केयर ब्रांड नेचुरल नेक्टर की फाउंडर मिसेस संगीता सिंघल जी। तो चलिए जानते हैं संगीता जी को थोड़ा और उनकी ब्रांड के बारे में इस एपिसोड में। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद SN रेडियो का, मुझे अपनी सफर और अपना थॉट आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड है मैम, और हम शुरू करेंगे आपकी शुरुआती जर्नी और शुरुआती सफर से, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि आपको नेचुरल स्किन केयर में जाना है। ये किस तरह से हुआ ये सफर तय कि ये मेरी कॉलिंग है या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुझे जाना है? क्योंकि मैं जानती हूँ आपके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी रही है। तो किस तरह से आपने ये पहचान, अपनी पहचान को पहचाना और उस पे, उस रास्ते पे चलना शुरू किया, वो बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये बल्कि एक इमोशनली जुड़ा हुआ है। जब मैंने देखा कि बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो नेचुरल कह तो देते हैं लेकिन उनकी शुद्धता इतनी नहीं होती है, जब मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया तो मुझे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मैंने खुद में ही स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए और उसपे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए।
1: जी,
2: ये मेरा एक पेशन है और इमोशनल है, दोनों है।
1: जी जी, तो कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई रिएक्शन हो गया या कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपको हंसा देता है, आज भी गुदगुदा देता है, आज भी अगर वो साझा करना चाहे तो?
2: मेरे प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मार्केट के प्रोडक्ट मुझे कभी सूट ही नहीं हुए हैं।
1: अच्छा, जी जी जी, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या किस तरह से, कोई एक ऐसा इंस्टेंस या एनेक्डोट हमारे साथ साझा करना चाहें कि कभी कुछ ट्राई किया हो और इस तरह का कुछ रिएक्शन हुआ हो?
2: हाँ, मुझे एक्चुअली बचपन से ही स्किन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था, तो जनरली हमारी मम्मी वगैरह क्या करती थी, हमें मुल्तानी मिट्टी से नहला दिया करती थी और ज्यादा जब ड्राइनेस होती थी तो ग्रीसिन लगा दिया करती थी। लेकिन मार्केट में धीरे धीरे ना वो भी एकदम प्योर नहीं आने लगा कि ग्रीसिन भी हमें प्योर मिल जाए या मुल्तानी मिट्टी भी हमें प्योर मिल जाए।
1: करेक्ट,
2: जब मार्केट की साबुन वगैरह भी हम यूज करते थे ना तो मुझे बड़ी ईचिंग सी, रैशेज और ऐसे लाल लाल स्पोर्स हो जाते थे स्किन पर, और जब थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता था तो हाथ पैरों में ना इसकी स्किन उतरती थी। सही बात है, इसलिए फिर मुझे लगा कि यहाँ से बचपन से धीरे धीरे धीरे मैं कोशिश करती रही डे बाय की कुछ घर की चीजों की रेमेडी बनाऊं, कुछ घर की चीजों का यूज करूं। इस तरह से फिर मेरा सफर शुरू हुआ।
1: वाओ, थैंक गॉड आपका सफर शुरू हुआ, सो दैट हमारे स्किन के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट आया नेचुरल नेक्टर के नाम से। तो मैम, इसी एहसास के साथ हम लेंगे एक सॉन्ग का ब्रेक, हमारा पहला गीत आज का, राही नए नए रास्ता नया नया। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक संगीता जी. मैम, अब आगे चलते हैं और जानते हैं थोड़ा और डीप में कि आपने हमें बताया कि नेचुरल के नाम पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल नहीं है, एक्चुअली केमिकल बेस्ड हैं. बट एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, जब मैं आज भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ और मैं स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे पहचान सकती हूँ एज अ ले पर्सन कि ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग का प्रोडक्ट है या एक जेन्युइन हेल्थ केयर का या स्किन केयर का प्रोडक्ट है जिसपे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो वो जो कॉम्पोनेंट है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, वो क्या है? क्या वो प्राइस है? क्या वो इन्ग्रीडियंट्स हैं? कैसे एक ले पर्सन, एक कंज्यूमर पहचान सकता है कि असली क्या है और सिर्फ मार्केटिंग क्या है?
1: इसके लिए सबसे बेस्ट है इंग्रेडिएंट्स
0: जी.
1: और मार्केटिंग तो देखिए, जो अच्छे पैसा खर्च कर सकता है वो तो मार्केटिंग में पैसा खर्च सकता है, लेकिन जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और सिंगल हैंड से काम कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए पैकेजिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, न कि हम पैकेजिंग बेचते हैं. तो मैं यही कहूंगी कि मेन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है. और इसका एक सबसे बड़ा पहचान ये भी है कि उनकी लाइफ सेल्फ बहुत शॉर्ट होती है. जितना वो नेचुरल होगा उनकी लाइफ उतनी ही कम होगी.
0: ओके ओके, नाइस. और कोई ऐसा एक इंस्टेंस बता सकते हैं जहाँ पे, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कोई साबुन हो या कोई एक क्रीम हो, जो आपके प्रोडक्ट्स में से कुछ हो जिससे कोई कंज्यूमर एक आइडिया लगा सके कि हाँ, ये प्रोडक्ट नेचुरल है, सच में नेचुरल है? कोई ऐसा एक नुस्खा अगर आप शेयर करना चाहें.
1: जनरली मैं अपना रोज वाटर है, सपोज कीजिए मेरा खुद का ही, जैसे जो मार्केट में रोज वाटर आता है वो जनरली बोलते हैं कि रोज वाटर ओरिजिनल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है. लेकिन मैं सबसे ही पूछती हूँ कि जब रोज वाटर हम खुद बनाते हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो कभी उसमें कलर नहीं आता है, क्योंकि पिंक रोज से हम बनाते हैं उसको, हम स्टीम करते हैं, जनरली स्टीम डिस्टिलेशन से ही बनाया जाता है. तो उसका जो पानी कलेक्ट होता है वो व्हाइट ही पानी कलेक्ट होता है, वो पिंक पानी कभी कलेक्ट होता ही नहीं है. तो पिंक कैसे हो गया? और अगर पिंक हो भी गया सपोज कीजिए, तो आप उसको फूड में कैसे यूज करेंगे, आप आईज में कैसे डालेंगे? तो मेरा जो रोज वाटर है वो प्योर व्हाइट है, उसे आप फूड में भी यूज कर सकते हैं, स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आईज में भी.
0: ओके, नाइस. तो चलिए, नेचुरल नेक्टर का रोज वाटर जरूर यूज करना पड़ेगा आपकी बारी. तो इस बार जब मैं शॉपिंग जाऊंगी तो मेरा रोज वाटर जब खत्म होगा तो मैं नेचुरल नेक्टर का ही रोज वाटर यूज करूंगी. आगे चलते हैं मैम. आपकी जर्नी में आपने बताया आपके हस्बैंड का ये सपना था, बेसिकली उनका ये ड्रीम था, और फिर आपके इन-लॉज ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत इम्पोर्टेंस दी, हर तरह से आपको एक फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा. तो इस ये जो आपके स्ट्रेंथ थी, इसने आपके सफर को किस तरह से एक मीनिंग दिया, एक मतलब दिया, एक मकसद दिया? और क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती और उन लोगों में जिनके पास इस तरह का सपोर्ट होता है? आप कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो बहुत पर्सनल हो, जो आपको लगता है कि इंस्पायर कर सकता है हमारे श्रोताओं को और आपके जैसी वुमेन फोक को जो अपना बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं, जिनके पास सपने तो हैं बट शायद सपोर्ट नहीं है?
1: जी मैम, इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब परिवार साथ होता है ना तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ होती है. जब हम कभी डगमगा रहते हैं, हमें डीमोटिवेट आ जाता है या कुछ, तो वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं बिका. जब मैं आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने जब शुरू किया, मैंने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई, बहुत छोटी सी, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं कैसे, क्या बोलूं मैं ऐसा कि लोग बाग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें. क्यों खरीदेंगे वो मेरा? क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं. तो बोले कि जो तुमने बनाया है, तुमने उसमें डाला है, उसको फील किया है, उसको शेयर करो.
0: करेक्ट.
1: तो सामने वाले को महसूस होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो फेक नहीं है, वो सच्चाई है. मैंने वैसा ही किया. फिर जब एग्जीबिशन लगाई तो किसी किसी दिन हम ऐसा होता था कि हमारी एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता था. फिर मैं घर आती, मुझे लगता है यार मैं तो बिजनेस बंद कर देती हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है. मैं इतना डीमोटिवेट हो जाती थी. फिर बोलते थे नहीं नहीं डीमोटिवेट, सब दिन एक जैसा नहीं होता. आज अच्छा बिका है, कल हो सकता है कम बिके, कल इससे भी ज्यादा तुम अच्छा कर पाओ.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो वो मोटिवेशन बहुत काम आता था इसमें. और एक पता नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ कि एक शायद ठाकुर जी का भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा, हाथ रहता है कि जब उन्हें लगता है कि हमारा एक हाथ जाने वाला है तो भी वो हमें दो रास्ते खोलने के लिए एक मोटिवेशन दे देते हैं कि भैया पता नहीं आगे फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होने वाला था, तो एक उनकी भी मुझे बहुत हिम्मत रही कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है।
0: कोई ऐसा डिवाइन मोमेंट या कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस कभी हुआ हो जब आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हों और फिर एकदम से एक यू नो एक रे ऑफ होप दिखी, तो वो अगर आप साझा करना चाहें क्यों? मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत बार ऐसे मोड़ पे, ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जीवन में जहां पे वो सच में गिव अप करने वाले होते हैं, बट कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ होप उनको मिल सकती है या वो ढूंढ सकते हैं। तो उस एक इंस्पायरिंग सफर को अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे मैम, अगर आपके जहन में अगर कुछ आ रहा है अभी जो आप साझा करना चाहें।
1: जी मैम, मैं एक चीज करती हूँ शेयर आपसे।
0: जी
1: मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, अभी तो नहीं रहे, लेकिन
0: वो
1: नहीं रहे तो मुझे ऐसा लगता था कि जब उनका सपोर्ट खत्म हो गया तो शायद मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अकेली, मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मतलब मैं सोचती रहती थी क्योंकि बिजनेस करने की हिम्मत भी खत्म हो गई। डीमोटिवेट इतना ज्यादा हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली बच्चों ने बोला, मेरे फादर मदर इन लॉ ने भी बोला कि जब तुम्हारा सपना है और उसका सपना है तो उसके सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें मोटिवेट होना है, तुम्हें गिरना नहीं है। फिर मुझे भी डे बाय डे यही फील होता रहा कि नहीं, ये मेरा सपना है, इसे तुझे अपने जीते जी, मेरे जीते जी इसको पूरा करना ही करना है, करना ही है, इसको किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। और फिर

0: सॉरी फॉर द लॉस ऑफ योर हस्बैंड.
1: ना।
0: हम पूरी SN फैमिली की तरफ से आपको एक कंडोलेंस देना चाहते हैं, और आपको आपके आपकी इस शख्सियत के लिए आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि इतने ब्लॉकेजेस के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे और आपने उनके सपने को जिंदा रखा. दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस सपने को मर जाने दें और अपने ग्रीफ में बह जाएं, और दूसरी चॉइस होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग ले पाते हैं, बट वो होती है उस सपने को जिंदा रखना और उसको आगे ले जाना. तो वो करके आपने ऑलरेडी उनको एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पे कर दिया है, और आई एम श्योर वो जहां भी हैं वो बहुत प्राउड हैं और बहुत हैप्पी हैं आपकी जर्नी को लेकर. तो बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम. इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, जब कोई बात बिगड़ जाए.

0: क्या बेहतरीन और सदाबहार नगमा है ये। मैम आगे चलते हैं और जानेंगे आपसे कि आई एम श्योर आपके सफर में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी जैसे जीवन आगे चला, और लोगों का ट्रस्ट जीतना जैसे आपने बताया कि शुरुआत में किस तरह से लोगों को बिलीव कराएं अपने प्रोडक्ट में, क्या कहें उनसे, तो वो सब जो चैलेंजेस थे उन सबके बीच क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस है आपकी, क्या कोई ऐसा विश्वास है आपका, या कोई ऐसी एक तरीका है आपका इस सब से निकल के हमेशा चलते रहने का एक जज्बा बनाए रखना, क्या है वो ऐसी चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? क्या वो डिवाइन पावर है, क्या वो इनर स्ट्रेंथ है, क्या वो कोई प्रैक्टिस है, मेडिटेशन, योगा, जो भी, वो अगर आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: जी मैम, इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो है कि एक तो हमारा परिवार का सपोर्ट, दूसरा है मेरा एक इसमें मोटिवेशन जो मुझे मिला वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। वो लास्ट तक जो उनका मोटिवेशन था वो यही था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आखिरी सांस तक इस बिजनेस को करना ही करना है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन हमें डीमोटिवेट की तरफ जाना ही नहीं है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत कमी थोड़ी आ रही है, तुम्हारे पैसे से थोड़ा सा घर चलेगा, ये वो सब। लेकिन नहीं, हमें अपने सपने के लिए भी जीना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और आएंगे चैलेंज तो आते ही हैं, फाइनेंशियल चैलेंज भी आते हैं, बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आते हैं, सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कस्टमर का भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो मिलता है सपोर्ट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना समय हो गया इस बिजनेस में मैम?
1: मुझे इसमें हो गए हैं 8 या 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स।
0: वाओ वाओ, अमेजिंग। एक डेकेड, एक दशक हो गया है ऑलमोस्ट। आई एम श्योर आप एक मदर भी हैं, और एक मदर होने के साथ साथ बिजनेस संभालना और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करना, तो इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस को किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? कभी बच्चों के साथ कोई चैलेंजेस आए या कोई ऐसा इंस्टेंस, अगेन मैं कोई एक कोई वाक्य अगर आप साझा करना चाहें कि कभी ऐसा हुआ हो जिसने आपको स्ट्रेंथ दी हो, जो परेशानी के साथ आया बट जाते जाते आपको स्ट्रेंथ देकर गया जब आपने उस मोमेंट को संभाला, उस लम्हे को जिया, तो किस तरह से, और आपके बच्चे किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं इस वेंचर में?
1: मदर होने के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर दोनों रोल्स जो मैंने निभाए हैं वो वाकई में इमोशनली तो बहुत होते हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे एक हिंदुस्तानी महिला के लिए, तो शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें मेरे बच्चों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। जब मुझे लगता था कि मुझे बच्चों के साथ अभी बाहर जाना है या उनको कहीं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा पाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं आप अपना बिजनेस करो, हम चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, तो वो कर लेते थे इस तरह से मैनेज। और एक दूसरा पॉजिटिव मुझे वहां से आया जब मैंने मेडिटेशन और योगा करना शुरू किया। मैं जब भी थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होती हूँ या कहीं से भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस, मेरा मतलब शरीर भी लो जा रहा है, माइंड से भी या फिजिकली भी मैं लो फील करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपना सिर्फ जनरली म्यूजिक अपने लगा लेती हूँ और अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान में अपने बैठ जाती हूँ, एक घंटा आधा घंटा, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है मैं नहीं सुनती नहीं हूँ।
0: बिल्कुल।
1: अब वो एज आ चुकी है कि हमें अपने लिए भी जीना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक कटआउट जोन क्रिएट कर लेना अपनी पसंद की चीजों के साथ और अपने साथ एक मी टाइम एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आपको म्यूजिक का शौक है क्या? आप गाते भी हैं मैम?
1: नहीं, मुझे सुनना बहुत पसंद है, मुझे गाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन आप पुराने गाने मैं बहुत सुनती हूँ।
0: जी जी।
1: और मैं जहाँ रहती हूँ सोसाइटी में वहाँ मैं योगा भी रोज आती हूँ सुबह, मुझे उनसे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि वो योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है।
0: बिल्कुल, हमें बहुत सेंटर करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिखरे हुए थॉट्स को। तो अगला गीत मैं आपकी पसंद का ही सुनाना चाहूंगी। पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्रोडक्ट्स में आपने बताया कि केयर और ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सबसे ऊपर है हर चीज से ज्यादा बढ़ के। तो क्या आप मानते हैं कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनमें जो मेकर है उसकी एनर्जीज, उसके इमोशंस ट्रांसफर होते हैं? कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो इंटेंट है प्योर, वो भी ट्रांसफर होता है आपके प्रोडक्ट में? किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: हाँ, मैं पूरी तरह मानती हूँ कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में मेकर का इमोशनल बहुत और एनर्जी दोनों जुड़ी हुई होती है। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारी स्किन जितनी सेंसिटिव है, बच्चों की स्किन जितनी सेंसिटिव है, बड़ों की, उतनी ही सबकी स्किन सेंसिटिव है। हर की स्किन को बेबी केयर की ही नीड होती है। तो मुझे अपनी स्किन पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, फिर अपनी स्किन पे ट्राई करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे रिजल्ट थोड़ा ठीक आ रहा है या कुछ 19-20 है या कम ज्यादा आ रहा है ड्राइनेस या वो, तो मैं मेरे बच्चों पर या जैसे छोटे बच्चे हैं उन पर या मेरी मदर पर, हर एज पे मैं ट्राई करके फिर उसको मार्केट में लॉन्च करती हूँ, ताकि सामने वाले पर उसको स्किन पर इतना खराब रिजल्ट ना आए। अगर फायदा ना हो तो कम से कम वो उसको यूजलेस भी ना जाए उसके लिए।
2: और आपके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं और एडोलेसेंट हैं, किस तरह टीनेज हैं, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रेंज है, और सबसे आपका जो जिसको आप रेकमेंड करेंगे सब लोगों के लिए स्किन केयर का एक बेसिक कोई प्रोडक्ट जो आप सबको रेकमेंड करना चाहें नेचुरल नेक्टर का।
1: मेरे प्रोडक्ट वैसे देखिए न्यू बॉर्न बेबी भी यूज कर सकता है क्योंकि नेचुरल है
2: जी,
1: तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारी स्किन भी बेबी सॉफ्ट ही होती है, जैसे बच्चों की है उतनी ही हमारी है। तो मेरे प्रोडक्ट सारे नेचुरल, चाहे आप मेरे यहाँ का बॉडी वॉश यूज कीजिए, चाहे हैंड वॉश यूज कीजिए, चाहे मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, चाहे स्क्रब यूज कीजिए।
2: जी जी, तो आप
1: जो बॉडी वॉश आप लगा रहे हैं वही बच्चे लगा सकते हैं।
2: वाओ वाओ, वो इतने नेचुरल हैं
1: जी।
2: राइट, तो मैम आपकी पसंद का कोई गाना बताएं जो अब हम प्ले करना चाहेंगे।
1: जो भी आप पसंद, मेरे तो पुराने गाने सब पसंद आते हैं।
2: अच्छा, फिर भी कोई आपका फेवरेट, टॉप फेवरेट अगर आप सुनना चाहें तो हम आपकी फरमाइश पे प्ले करना चाहेंगे।
1: सागर जैसी आंखों वाली।
2: वाओ, क्या बात है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म सागर से, सागर जैसी आंखों वाली। ये तो बता तेरा नाम है क्या।

बहुत ही प्यारा गीत। मैम आगे चलते हैं। मेरा सवाल अब है आपके कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि नेचुरली 10 साल हो गए तो एक कस्टमर बेस आपका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया होगा। तो जब वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आपको ट्रस्ट दिखाते हैं, आपको लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी दिखाते हैं, तो वो फीलिंग आपको अंदर से किस तरह से फुलफिल करती है? और कोई कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कि आई एम श्योर 10 सालों में बहुत सारे कस्टमर एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो कोई एक या दो एक्सपीरियंस

0: जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप कभी नहीं भूल पाते, जिसने आपकी जर्नी को बहुत शेप किया है, वो अगर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
1: मैम, जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और दोबारा उसे जब परचेज करते हैं, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि उन्हें इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर किया कि वो मेरे प्रोडक्ट दोबारा लेने आ रहे हैं। टच वुड, मैं यही कहूंगी कि अभी तक जितने भी कस्टमर जो जुड़े हैं, कुछ को छोड़कर बाकी 90% ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। यहाँ तक कि वो अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या जैसे कोई छोटे ओकेजन भी होते हैं ना, तो वो मुझसे हैम्पर बनवाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम आप ये पूरे साल भर का कैलेंडर हमारा रखिए, ये है, आप इस एड्रेस पे इस डेट को ये पहुंचा दीजिएगा आप हैम्पर। इतना मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मेरे सफर में मेरा सपोर्ट किया, फिर ट्रस्ट जमाया मेरे ऊपर। और कई कस्टमर तो मेरे ऐसे हैं, अभी मैं आपको बता दी, थोड़े दिनों पहले एक ब्यावर के कस्टमर है मेरे, मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी ब्यावर में, पहली बार मैं उनसे मिली। एक्चुअली उनके हस्बैंड को बाहर जाना था फॉरन, उनकी यहाँ से फ्लाइट थी जयपुर से। वो मुझे ऐसे बोले कि मैम मैं प्रोडक्ट मंगा नहीं पाई हूँ, अब आप ब्यावर पहुंचा नहीं सकते क्योंकि आज उनको निकलना है और जयपुर से उनकी फ्लाइट है, लेकिन वो जयपुर जब तक पहुंचेंगे तब तक 11:30 बज जाएगी क्योंकि उनकी नाइट में फ्लाइट थी। फिर भी मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए, कोशिश करिए, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कि मैं उन्हें ये हमारे यहाँ 200 फीट तक मैं उन्हें दे देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारा उन्होंने मुझसे, मतलब उनको फील भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी तरफ से कोशिश की, मैं चलो ठीक है मैं, अब वो फॉरेन जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपके अलावा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा वहां जाकर भी, क्योंकि मुझे आप ही के फेस वॉश और बॉडी वॉश सूट होता है। फिर मैं उनको वहां तक, लकीली मैं 11:30 उन्हें वहां देने गई, वो इतने खुश हुए और उतना उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मैडम आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बाद में हम देखते हैं, पहले आपका जो कस्टमर के प्रति डेडिकेशन है कि आप उस कस्टमर के लिए कितना डेडिकेट हो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे वो प्रोडक्ट उसे देना है।
0: राइट राइट राइट,
1: वो मुझे, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे भी सामने वाले का सुनकर बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि हमें कोशिश तो करें ना हम।
0: करेक्ट करेक्ट, वो पर्सनल केयर में, सच में पर्सनल केयर आनी चाहिए जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है उसमें।
1: मुझे लगता है कि उन्होंने यूज किया, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से मैं लूंगा, क्या करूंगा, ये वो सब, तो मुझे लगा कि नहीं उन्हें मुझे देना चाहिए।
0: बहुत ही प्यारा सा एक यू नो एक्सपीरियंस आपने साझा किया। ऐसा और कोई इंस्टेंस जो आपके जहन में भी आ रहा है जो आप साझा करना चाहें?
1: ऐसा ही एक एक्सपीरियंस और है, मेरे एक कस्टमर है, उनका एक छोटा बेबी है, तो उन्होंने अपने ये बाहर की जितने भी आते बच्चों के प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा हाँ आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बेटे को, वो 6 या 7 मंथ का था, कि उसे स्किन पर रैशेज हो गए हैं, रेड, जैसे हम मालिश करते हैं तो वो रेडिश हो गया है उसका, तो अब मैं क्या करूं
0: जी।
1: फिर मैंने उन्हें बोला आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको एक क्रीम भेज रही हूँ अभी सिर्फ छोटी सी ट्रायल के लिए, आप उसको उसी क्रीम से बॉडी मसाज कीजिएगा, जब मालिश कराते हैं बच्चों की आप उसी से कीजिएगा, आपको रिजल्ट आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं उसके लिए ट्राई करूंगी कि कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर आपको भिजवा सकूं।
0: राइट,
1: फिर मैंने उन्हें क्रीम भेजी, उनको वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर उन्होंने गूगल पे जाके बहुत अच्छा रिव्यू भी डाला
0: जी।
1: और काफी लोगों को शेयर किया कि उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को जो इतनी एलर्जी हो गया था, जिसको पानी से अगर मैं वॉश भी करती थी तो भी वो चिल्लाता था, हम सोचते थे कि छोटा बच्चा रो रहा है, पानी से बच्चे डरते हैं कई बार, लेकिन पता चला कि वो स्किन एलर्जी थी उसको, कि वो कुछ भी अड़ रहा था ना उसकी स्किन के, तो वो रो रहा था। वो तब से आज दिन तक अपने बच्चों को मेरी ही बनाई हुई क्रीम्स लगाते हैं।
0: वाओ, हाउ अमेजिंग, इन एक्सपीरियंसेस में कितनी पर्सनल एक टच होती है और कितना एक आपको लगता होगा कि आप कितना चेंज ला पा रहे हैं किसी के जीवन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर, तो बच्चों से ज्यादा कोमल और यू नो आप सॉफ्ट, और एक मन जो एक यू नो सॉफ्ट हो जाता है वो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, और जब बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तो आई एम श्योर ये प्रोडक्ट्स एक यू नो मैजिक की तरह काम करते होंगे उनके ऊपर। आगे चलते हैं मैम, मेरा आखिरी सवाल आज का, क्योंकि आपने खुद ने अपने आप को इतना बुलंद बनाया है, अपनी शख्सियत को इतना बुलंद बनाया है अपने कर्मों से, अपने कॉन्शियस डिसीजन से, और हर ऑड के अगेंस्ट, हर परेशानी के अगेंस्ट आप खड़े हुए हैं, तो आज की जो वुमेन फोक हैं, जो अपने सपनों को यू नो जीना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं किसी रोड़े की वजह से, किसी ब्लॉक की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो, कोई प्रैक्टिकल मैसेज जो वो अपना सकती हैं, तो वो क्या होगा?
1: मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को भी कभी मत छोड़िए। हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने और सबके लिए जीते हैं, सबके लिए, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हम सबके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो छोटे छोटे कदमों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने भी शुरुआत की थी तो एक दो प्रोडक्ट से की, और जनरली मार्केट से एक छोटी छोटी दो बॉटल खरीद कर अपने फ्रेंड सर्कल को दिया, अपने रिलेटिव्स को दिया, वहां से मैंने शुरुआत की। छोटे छोटे कदमों से हम बहुत ऊपर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं
0: जी।
1: मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें उनसे कभी घबराना नहीं है। और जब एक महिला खुद पर भरोसा करती है ना, तो वो अपने साथ पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को और पूरे समाज को भी आगे ले जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला जब उठती है तो सच में वो पूरे परिवार को लेकर ऊपर जाती है और पूरा एक यूनिट उसके साथ ग्रो करता है। तो वो एक सिर्फ वुमन कर सकती है, एक सिर्फ औरत कर सकती है, ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी प्यारी, इतनी सरल और इतनी सहज बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके जीवन के बारे में, जिसने बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर आज इंस्पायर किया होगा। थैंक यू मैम। आप कुछ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में?
1: मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि एसएम रेडियो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी के रंग गीतों के संग आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे तो कुछ शब्द भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं मुझे कितनी खुशी हो रही है अंदर से।
0: मैम सो ग्लैड मैम, हम इक्वली खुश हैं और इक्वली एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम की एयरिंग के लिए, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, जो हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग का मकसद है और एसएन रेडियो का मकसद है, लोगों को खुश करना और उन्हें इंस्पायर करना थोड़ा सा। तो दोस्तों, संगीता जी की जर्नी ने हमें ये सिखाया कि जब फेथ, फैमिली सपोर्ट और सेल्फ बिलीव हो तो हर कहानी खूबसूरत बन सकती है। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग स्ट्रगल्स के बाद ही आते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी आपसे फिर से एक नए मेहमान के साथ और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप अपने सपनों पर थोड़ा और भरोसा करिए, थोड़ा और बिलीफ रखिए और जिंदगी के रंग गीतों के संग को महसूस करते रहिए। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
1: भावना। 90.8 FM

0: આપના આ પઢંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટેવિલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है. प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं. तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें.
2: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
3: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है. बड़ी मजेदार वाली बात है. आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है. डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते. वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं. वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं. वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं. बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए. बने रहिए आरजे समीर के साथ. हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है. और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें, बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: आज से पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थीं, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: matter. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
1: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

प्यार में। महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

मौसम ए आ।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

ಯಾಕ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ್ಮ ಜೋಳಗನೇ.

एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
1: अरे क्या

0: कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: जहां वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
1: ओ, हो, हो, हो, हो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

हेमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हेमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने, उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हिमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेमनगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और गीत

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

0: आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ रास्ते पैरों से नहीं बल्कि दिल से तय किए जाते हैं, और जब उन रास्तों पर सुरों के हम सफर मिल जाएं, तो सफर जिंदगी बन जाता है। नमस्कार, आदाब और एक बेहद खूबसूरत सुकून भरी शाम आप सभी के नाम। 90.8 FM रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और आप सुन रहे हैं हम सबका अपना प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, रोजमर्रा की इस भाग दौड़ में अक्सर दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं, लेकिन इस महफिल में ऐसा नहीं होगा। अल्फाज से एहसास तक एक ऐसी जगह है जहां गुजरे जमाने के वो नायाब फनकार, वो जादुई आवाजें और वो अमर गजलें लौट आएंगी, जो कभी सीधे कागज से उतरकर हमारे एहसासों में घुल मिल जाती थी। आज की शाम हम उन धुंधली यादों की मखमली डायरी को फिर से खोलेंगे, सुरों के उस सुनहरे दौर में चलेंगे जहां हर एक लफ्ज में मोहब्बत, जुदाई, इंतजार और सुकून का एक गहरा समंदर छुपा है। आज इस महफिल में कौन कौन से अजीम फनकार अपनी आवाज से जादू बिखेरेंगे, ये राज धीरे धीरे खुलेगा जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी। तो फिर क्या, अपनी खिड़कियों के पर्दे जरा सरका दीजिए, ताजी हवा का झोंका आने दीजिए, जहन के शोर को थोड़ा थाम लीजिए और खुद को सौंप दीजिए सुरों की इस खूबसूरत महफिल को। शेर पेशे की खिदमत है। वक्त की गर्द में जज्बात कहाँ मरते हैं, वक्त की गर्द में जज्बात कहाँ मरते हैं, दिल जवां हो तो साल महज गिनती के लगते हैं। उम्र चाहे कोई हो, जिंदगी का हर लम्हा हसीन है, जिंदा दिल लोग हर दौर में बहारें पैदा किया करते हैं। दोस्तों, वक्त का पहिया चलता रहता है, उम्र भी बढ़ती रहती है, चेहरों पर कभी ना कभी झुर्रियां आ ही जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल, जिनकी रूह और जिनका जज्बा वक्त की इस रफ्तार को भी मात दे देता है। एक ऐसी अजीम फनकार जो कभी जम्मू कश्मीर के राज दरबार की शान हुआ करती थी, जिनकी आवाज में एक अनोखा सा रौब, बेबाकी और जिंदगी को खुलकर जीने का एक जज्बा और जोश था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं संगीत की मलिका, मलिका पुखराज जी की। मलिका पुखराज का जन्म गालिबन जम्मू के पास किसी गांव में हुआ था, और वो 9 साल की थी जब से वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में गाने लगी थी और बाद में उनके दरबार की कोर्ट सिंगर बन गई थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, कुछ मसला हुआ कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। तो हफीज जालंधरी की लिखी नज्म अभी तो मैं जवान हूं को उन्होंने इस अंदाज से गाया कि ये उनकी पहचान बन गया और पूरी दुनिया में उन्हें अमर कर गया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज का जादू आज भी उतना ही जवां है। वो जब गाती हैं तो उम्र का फासला

मिट जाता है और दिल झूम उठता है। तो चलिए अपने दिल की उम्र को जरा पीछे ले चलते हैं और सुनते हैं मल्लिका पुखराज जी की आवाज में वो अमर और सदाबहार नज़्म, जो हर उस इंसान की कहानी है जो दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। गजल का मिसरा कुछ इस तरीके से है, इबादतों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है, जुनून है सबाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय हैं आप भी, भला शबाब व आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। और फिर कहती हैं, चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ताए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मल्लिका पुखराज को सुनिए।

मलिका पुखराज जी की कशिश भरी आवाज़ ने हमारी इस महफिल की शुरुआत में ही जो जोश और जज्बे का एक नया रंग भर दिया है। जैसे अभी तो मैं जवान हूँ, सुनते सुनते दिल वाकई उम्र के सारे बंधनों को भूल चुका है और अल्फाज से एहसास तक का हमारा ये हसीन कारवां इस जवान दिल के साथ बढ़ रहा है। दोस्तों, जब महफिल इतनी हसीन हो, सुरों का ऐसा जादू बिखरा हो और हमारे सब अजीज सुनने वाले हमारे साथ हों, तो दिल चाहता है कि वक्त यहीं थम जाए, ये रात ये शाम कभी ना ढले। इसी खास एहसास को लफ्जों में पिरोने के लिए अब हमारी महफिल में तशरीफ ला रही हैं संगीत की दुनिया की एक और अजीम शख्सियत। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरीदा खानम साहब।

अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो।

ना धरो। फरीदा खानम की रूहानी व रूहानी और नज़ाकत से दिल अभी पूरी तरह संभला नहीं है कि यादों के झरोखे से एक ऐसी सदा आई है जिसका जादू वक्त की सरहदों से बहुत ऊपर है। अल्फाज से एहसास तक का हमारा कारवां अब संगीत की उस सुनहरी तारीख के सामने अदब से सर झुका रहे हैं जिसकी चमक आज भी उतनी ही पाक है। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कई फनकार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बिना संगीत का इतिहास ही अधूरा रह जाता है। एक ऐसा नाम जिन्हें दुनिया ने सिर्फ सुना नहीं बल्कि पूजा भी है, मलिकाए तरन्नम यानी हमारी और आपकी बेहद अजीज मोहतरमा नूर जहां जी। लोग उन्हें मैडम नूर जहां जी भी कहते हैं। जब नूर जहां जी गाती थी तो सिर्फ अल्फाज नहीं गाते थे बल्कि उनके साथ एक पूरा दौर गाता था। आज हमारी महफिल में हम उनके उसी दौर की एक अनमोल धरोहर को वापस लाए हैं। फिल्म अनमोल घड़ी का वो कालजयी नगमा जिसे मौसिकार नौशाद साहब ने बड़ी शिद्दत से तराशा था, जहां नूर जहां जी के साथ सुरों के बेताज बादशाह मोहतरम सुरेंद्र जी की आवाज घुली हुई है। तो चलिए अपने दिलों के दरवाजे जरा खोल दीजिए और सुनते हैं ये अमर पेशकश जिसके बोल हैं आवाज दे कहाँ है

दोस्तों 90.8 FM रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर अल्फाज से एहसास तक का हमारा ये कारवां अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा है जहां सुरों की गहराई और जज्बातों का समंदर और भी गहरा होने जा रहा है। संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों को सुकून नहीं देती बल्कि जो वक्त की गवाह बन जाती हैं। एक ऐसी ही अजीम और जादुई शख्सियत जिन्हें दिल्ली घराने की रूहानी तालीम मिली और जिन्होंने अपनी मखमली और बेहद भारी और दमदार आवाज से पूरे बर्रे सगीर मतलब सब कॉन्टिनेंट बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गज़ल और ठुमरी की बेताज मलिका मोहतरमा इकबाल बानो जी की। आज हमारी इस महफिल में हम इकबाल बानो जी की एक ऐसी नायाब अमानत लेकर आए हैं जो मोहब्बत करने वालों का जैसे परमानेंट एंथम बन चुका है। हफीज़ होशियारपुरी साहब की लिखी एक ऐसी गज़ल जो बिछड़ने के दर्द को भी एक बेहद खूबसूरत और बावकार अंदाज देती है। तो चलिए अपनी रूह को सौंप दीजिए इकबाल बानो जी की पुरकश आवाज को। आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए इस लाजवाब गजल को जिसके बोल हैं, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे आपको नजर करते हुए।

मोहतरमा इकबाल बानो जी की उस दमदार और मखमली आवाज ने हमारे दिलों को एक अजीब से जज्बात से भर दिया और अब अल्फाज से एहसास तक का हमारा हसीन कारवां महफिलों के उस सलीके से आगे बढ़कर सीधे रूह की उस सादगी और दर्द की तरफ बढ़ रहा है जहां कोई बनावट नहीं। महफिल के उस अदब और ठहराव में खोया था दिल अभी कि रूह को झकझोरने वाली एक और सदा आई है। ये वो आवाज है जिसमें किताबों के कायदे नहीं बल्कि सीधे रेगिस्तान की मिट्टी की वफा आई है। दोस्तों, जब दिल किसी की याद में बेहद बेबस हो जाता है, जब रातों की नींदें उड़ जाती हैं, तब दिल किसी शास्त्रीय राग में नहीं रोता, तब दिल से एक सादी ठेठ और सीधी पुकार निकलती है। इसी सच्चे और बेबाक एहसास को अपनी आवाज देने के लिए अब हमारी महफिल में गूंजने जा रही है वो आवाज जिसे दुनिया बेहद प्यार से रेगिस्तान की बुलबुल कहती है। जी हाँ, हमारी और आपकी बेहद अजीज मोहतरमा रेशमा जी। रेशमा जी की तालीम तो सूफियों के दर और रेगिस्तान की खुली हवाओं में हुई थी। यही वजह है कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से दर्द की कोई नदी बह रही हो जैसे। तो चलिए आज की शाम को थोड़ा और गहरा करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रेशमा जी की उस अमर रूहानी आवाज में महसूस कीजिए इस बेइंतहा दर्द भरे नगमे को जिसके बोल हैं, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा।

दर्द की उस गहरी नदी से निकलकर दिल अब जरा सा मुस्कुराया है। मोहब्बत के उस रूठने मनाने का एक खूबसूरत दौर आया है। लफ्जों में मिसरी सी घुलने लगी है अब इस महफिल में। देखो हवाओं में किसी की मासूम आवाज का साया है। रेशमा जी की उस रूहानी आवाज के उस गहरे दर्द ने यकीनन हम सब की आंखों को थोड़ा नम किया होगा, लेकिन दोस्तों मोहब्बत में सिर्फ बिछड़ने का दर्द ही नहीं होता, उसमें एक बेहद खूबसूरत मीठा और प्यारा सा एहसास भी होता है, और वो है अपनों से रूठना और उन्हें मनाना। इसी प्यारे और नाजुक से एहसास को अपने सुरों से सजाने के लिए अब हमारी महफिल में गूंजने जा रही है वो आवाज़ जिन्हें दुनिया अदब से बुलबुले पाकिस्तान कहती है। जी हाँ, मोहतरमा नयारा नूर जी। नयारा नूर की आवाज़ में ऐसी जादुई सादगी और ऐसी मिठास है कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कानों में धीरे धीरे मिसरी घुल रही हो। तो चलिए, अगर आपका भी कोई अपना आपसे रूठा हुआ है तो इस नगमे को उसके नाम कर दीजिए। अपने चेहरे पर लाइए एक प्यारी सी मुस्कान और नयारा नूर जी की इस बेहद सुरीली और सदाबहार आवाज में डूब जाइए। सुनिए ये लाजवाब पेशकश जिसके बोल हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, अंगना में बाबा द्वारे पे भैया, जाने ना दूंगी मैं तो थामूंगी बैया, तुमको मना कर ही दम लूंगी सैया, चाहे तड़पूं चाहे रोऊं चिल्लाऊं पिया, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। शौक फरमाइए।

दोस्तों, नयारा नूर जी की उस मासूम आवाज़ में रूठे हो तुम। तुमको कैसे मनाऊं पिया के साथ। हवाओं में जो मीठी मिश्री घोली थी, उसकी मिठास अब भी हमारे लबों पर है। लेकिन दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक का हमारा ये कारवां अब अपने आज के आखिरी और तारीखी मुकाम पर आ पहुंचा है। एक ऐसा मुकाम जहाँ सुरों के दो ऐसे समंदर एक साथ आ रहे हैं, जिनके बिना मौसीकी की कायनात ही अधूरी है। आज इस महफिल के आखिरी पड़ाव पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मौसीकी की तारीख की एक ऐसी नायाब और नादिर अमानत, जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है और जो सीधे आपकी रूह छू लेगी। एक तरफ हैं मुजस्सम मलिकाए तरन्नम मोहतरमा नूर जहाँ जी, और दूसरी तरफ हैं सुरों के बेताज बादशाह रूहानियत की बुलंद आवाज़, जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सोचिए, जब ये दो अजीम फनकार बिछड़ने के दर्द, इंतज़ार की बेबसी और प्यासी आँखों की दास्तां एक साथ गाते हैं, तो समा कैसा होता होगा। जब मोहतरमा नूर जहाँ की जी की खनकती आवाज़ और खान साहब की वो रूहानी तान एक साथ गूंजती है, तो वक्त अदब से थम जाता है। तो चलिए, आज की इस महफिल के इस सबसे खूबसूरत, खसूसी और नायाब कलाम को हम सब मिलकर महसूस करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और इन दो मुअज्जज फनकारों की आवाज में डूब जाइए, जहां जुदाई का एक बेहद गहरा एहसास छुपा है। नूर जहां साहिबा फरमा रही हैं, तेरे बिना रोगी होए नैन प्यासे नैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, मैं लेवा रो के तेरा नाम, मेरे साजन किथे जावा, आवे ना किते मनु चैन। कह रही हैं, तेरे बिना रोगी हो गए मेरे प्यासे नैन, मैं तुम्हारा रो रो के नाम ले रही हूँ, मेरे साजन कहाँ जाऊँ, अब मुझे कहीं चैन नहीं आता। और जनाब नुसरत साहब कहते हैं, अखा ने वेखी है तेरी राह, अखा ने वेखी है तेरी राह, यानी आंखों ने देखी है तेरी राह, लंबिया जुदाइयां सह के रोवा ते लेवा तेरा नाम, आंखों ने देखी है तेरी राह, लंबी जुदाई सह के रोता हूँ तेरा नाम लेता हूँ। आपकी नजर ये खूबसूरत शाहकार

दोस्तों, जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और मैडम नूर जहाँ जी की इस रूहानी और ख़ूबसूरत इत्तेहाद के साथ आज की ये महफ़िल अपने मुकम्मल मुकाम तक आ पहुँची है। वक्त की रफ़्तार का पता ही नहीं चला दोस्तों कि कब हम अल्फाज से चले थे और एहसास तक आ पहुँचे, लेकिन सुरों का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और यादों के चिराग कभी बुझते नहीं। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं अब आपसे इजाज़त लूं, तो चलते चलते मैं बस यही कहूंगी कि ज़िंदगी की इस मसरूफियत में अपने दिल के एहसासों का को ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि लफ्ज़ तो सिर्फ कान छू कर गुज़र जाते हैं, बात तो तब है जब कोई अल्फाज सीधे एहसास बन जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से मोहब्बत कीजिएगा और सुनते रहिएगा मुस्कुराते हुए। शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टांट्या भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से।
1: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टांट्या भील रेडियो को सुनता हूं। उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM।
0: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबुआ ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: कौन क्या?
2: रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुँचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य करते हैं।

0: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
4: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं, तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
3: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
4: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें, जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
3: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह, अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
4: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
3: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: फार्म को रोड के एकदम करीब अपना कुटाया, स्कूल के जस्ट पास में उन्होंने अपनी नया घर उन्होंने बनाया है और साथ में एक छोटा सा पोइट्री फार्म भी रखा है जहां पर उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो वहां पर अंडे और मुर्गियां दोनों वहां पर बेचते हैं। दोस्तों आप अपना अंतरवेलिया से भगोर वाले रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर इनके अपने कड़कनाथ फार्म पे विजिट कर सकते हैं, इनसे इन कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले भी सकते हैं। और अगर आपको अधिक मात्रा में या कम मात्रा में अगर आपको कड़कनाथ लेना चाहते हैं तो आप अरविंद भाई से संपर्क भी कर सकते हैं, हम इनका नंबर आपको दे देंगे। और आप भी खुद उस रास्ते से निकल रहे हैं तो आप उन कहीं पे पास की किसी भी दुकान से पूछ के अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
2: तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले। अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
2: बिल्कुल
3: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
2: बिल्कुल
3: कितने बिक रहे हैं
2: बिल्कुल
3: है ना,
2: बिल्कुल
3: और कितना खा रहे हैं,
2: कितना खा रहे हैं,
3: वो सब अनुमान लग जाएगा।
2: हाँ।
3: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
2: फार्म बनाना पड़ेगा
3: उसको
2: बिल्कुल,
3: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
2: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
3: कम से कम 13-14 फीट।
2: बिल्कुल।
3: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना,
2: छुरी को
3: डाल देने के नीचे
2: बिल्कुल,
3: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
2: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
3: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
2: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
3: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए है ना, इस बात का ध्यान रखना है।
2: थोड़ा सा वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है।
3: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
2: अच्छा,
3: क्या है कि वायरस आ जाए,
2: वायरस आने के डर,
3: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
2: अच्छा अच्छा। चूना,
3: तो चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना,
2: अच्छा अच्छा,
3: चप्पल से वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं और चूने में गिर जाते हैं, मर जाएंगे।
2: ऐसा। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते हैं।
3: और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
2: अच्छा लाइट,
3: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको।
2: बिल्कुल, लगातार उसको जलाते रहना।
3: हाँ, जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ।
2: बिल्कुल,
3: वो छोटे वाले,
2: छोटे वाले।
3: हाँ।
1: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल रखना करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है, मेरे दादाजी की ली हुई। तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था, पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश। तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे, क्यों ना इनको बचाया जाए। तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया, तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गियां लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई, और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे। तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं, और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े

0: उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें, ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे, बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27-28% कैलोरी होनी चाहिए। साथ ही 3-4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
1: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध हैं, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है।
0: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2-3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM, छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए समय समय पर, क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90

0: 98.8 FM आपडू रेडियो आपडी बातें। दोस्तों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटा भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। કિસાન સાથીઓ જૈસા કે આપ લોગ જાનતે હૈ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से।
1: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टांटिया भील रेडियो को सुनता हूं। उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं बकरी पालन के ऊपर। तो किसान साथियों आज हम चर्चा करेंगे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। उनके खान पान को हमें किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे हमें उनका कौन से वातावरण में उन्हें हमें रखना चाहिए, साथ ही जानेंगे उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी दवाइयां हमें उन्हें देनी चाहिए और कैसे रखना चाहिए, इन सब का ख्याल तो जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं।
3: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपनी आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
2: जी।
3: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
2: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो।
3: देखिए हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
2: जी,
3: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहाँ की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
2: जी।
3: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
2: जी,
3: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
2: जी,
3: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
2: जी
3: ये अति उत्तम है।
2: बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं।
3: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
2: जी,
3: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जहां पर कि 20 25 50 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
2: जी,
3: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए। जिसमें कि बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
2: जी।
3: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
2: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
3: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
2: जी
3: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
2: जी।
3: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें। अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
2: जी, बिल्कुल।
3: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
2: जी।
3: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
2: जी।
3: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
2: जी।
3: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
2: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
3: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
2: बिल्कुल,
3: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं उनकी अलग अलग पहचान है
2: जी।
3: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
2: जी,
3: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
2: बिल्कुल,
3: तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरे के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों
2: जी।
3: दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना 6 महीना 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
2: जी।
3: और हम आमतौर पे 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
2: जी।
3: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज।

0: का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
1: जी।
0: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी हो, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
0: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
1: जी।
0: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
1: जी।
0: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियाँ हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों
1: जी।
0: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
1: जी।
0: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आएं
1: जी।
0: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
1: जी।
0: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज़्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं। लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। जो शेड है वो बनाई गई है, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
0: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो नर और मादा हैं उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
1: जी।
0: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
1: जी।
0: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
1: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें है, कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
0: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
1: जी।
0: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है
1: जी।
0: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी
1: जी
0: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
1: जी।
0: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है, स्ट्रेस के स्ट्रेस शो करती है
1: जी,
0: तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
1: जी,
0: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
1: जी।
0: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
1: जी,
0: इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए,
1: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
0: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
1: जी,
0: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम, वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है?
0: देखिये, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
1: जी,
0: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है
1: जी।
0: जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
1: जी।
0: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो

0: आती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
1: जी।
0: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं। अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
1: जी,
0: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
1: बिल्कुल।
0: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भधारण कराने के लिए तैयार है और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है। इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
1: जी।
0: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज। आप सुन रहे थे बकरियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आपने जाना कैसे हमें बर्बरी बकरी का पहचान करनी चाहिए, उनके लिए कैसा बाड़ा बनाना चाहिए, उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आदि जानकारियों को आपने जाना। और भी हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
2: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
1: जी,
2: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
1: जी।
2: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए
1: जी,
2: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए, उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती है
1: जी।
2: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
1: बिल्कुल
2: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं
1: जी। बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
2: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सुबबूल है, मलबेरी है
1: जी।
2: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं, और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं,
1: बिल्कुल,
2: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
1: जी,
2: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
1: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर संभावनाएं जो है वो काफी हैं, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा।
0: किसान साथियों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान से भी आप बकरियां ले सकते हैं, वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं कैसे हमें बकरी पालन करनी चाहिए, साथ ही आपको उन्नत किस्मों की बकरियां भी वहां पर उपलब्ध होती है। आइए मिलते हैं किसान से और पूछते हैं कैसे हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरी ले सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आइए सुनते हैं
1: कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
3: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई, और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ, और कम टाइम में कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
4: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाज़ार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं, और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
5: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला, और 10,000 से लेके 20,000-25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे, एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ।
0: जी,
1: हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये एक और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं हमारे संस्थान में, डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में हैं, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुँचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो

0: हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है
1: जी,
0: या जखाना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं
1: जी।
0: जब किसान वापस जाते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें को देना है
1: जी।
0: और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें
1: जी।
0: तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उसके उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा
1: जी,
0: कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
1: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर चौहान अगर बात की जाए, क्योंकि तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
0: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है उसमें मुख्य गुण कुछ ऐसे है जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है
1: जी।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि ये इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है
1: जी।
0: तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके
1: जी।
0: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है,
1: उसको बढ़ा सकता है।
0: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
1: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक है, यानी हमारे जो किसान है, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर आगे बढ़े?
0: देखो, अब यहाँ सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे
1: जी।
0: अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है के हैं, किसी जो है
1: विज्ञान केंद्र
0: है वहाँ तक हम पहुँचाते हैं, और ताकि वहाँ पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें
1: जी,
0: और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
2: किसान साथियों, आपने बकरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, साथ ही आप लोगों ने जाना कैसे बकरी पालन हम कम से कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं और उसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। किसान साथियों, बकरी पालन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारामा अने कमाई ना बारामा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, बकरी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर।
1: भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है, मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस के साथ साथ खाल, बाल और रेशों का भी व्यवसायिक महत्व है। इसके अलावा मैंगनी व मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह की प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इनके आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25-33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे चेचक। ये विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है जो सांस लेने या त्वचा के घाव के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण 2-7 दिन के अंदर सामने आते हैं, जिसमें पशु के शरीर का ताप बढ़ता है, नाक और आंख से पानी निकलता है, पशु के मुंह, थन और पूंछ के नीचे के हिस्से में छाले निकल आते हैं। इस बीमारी में स्वस्थ पशुओं को बीमार बकरियों से अलग रखा जाता है। छालों, घावों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गुनगुने पानी से साफ करना होता है। साथ ही दवाओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए। निमोनिया, पानी में भीगने, ठंड लग जाने, अचानक मौसम के बदलने से सर्दी जुकाम के कारण निमोनिया हो सकता है। जुकाम पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसमें बकरियां कमजोर हो जाती हैं, खाने में अरुचि, कब्ज की शिकायत और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके अलावा तापमान बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बकरियों को ठंड लगने से बचाएं, उनके रहने का स्थान सूखा व साफ रखें और निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। खुरपका मुंहपका रोग एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। बकरी सहित सभी खुर वाले पशुओं को ये रोग हो सकता है। इस रोग में पीड़ित पशुओं के मुंह व पैर में घाव होना सबसे पहला लक्षण है। साथ ही पशु को तेज बुखार आ जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ता है, जीभ पर फफोले निकलते हैं जो कि बाद में फटकर घाव बन जाते हैं। इसके कारण पशु कुछ खा नहीं पाता। वहीं खुरपका में खुरों के बीच घाव हो जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। इन रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

गांव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज्यादातर बचपन से लेकर 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो जिंदगी देखते हैं कि खराब है, बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, वो घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाते, और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो दो पैसे ज्यादा कमाए, तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में जिंदगी जी रहे हैं।

जब इसमें आए तो एक साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे, उन्होंने इतनी हेल्प करी। और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी, और उसमें बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ कम से 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं।

सबसे पहले हम 2007-08 में एक लेजर लेबलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी कर रहा है, पर अब हमारे गांव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले, उससे करीब 30-35% पानी की बचत है। साथ साथ में पहले छिड़कवा विधि से गेहूं बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं, तो उससे पैदावार में भी फर्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और यील्ड में भी फर्क पड़ा।

0: साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फर्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 क्विंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें 80 क्विंटल बिक गया, 20 क्विंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है। उसको हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिए।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम। किसान साथियों आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बकरी पालन से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने उन्नत किस्म की कौन कौन सी बकरियां होती है, कौन सी बकरी का दूध हमें फायदेमंद होता है और कैसे हम बकरी पालन कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों के समय हमें बकरियों का उचित इलाज करना चाहिए और कौन से वातावरण में हमारी बकरी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, बकरी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साहब भाइयों अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है दोस्तों, एक नया टैलेंट, एक नई गायिका आज हमारे साथ हैं। ये हैं डॉक्टर रोहिणी काले। बाकी डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद बताएंगी, वो कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं। डॉक्टर रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
1: यस, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहिणी काले फ्रॉम पुणे। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर एंड जनरल प्रैक्टिशनर, बट जनरल प्रैक्टिस में मैं बहुत, मेरा मन नहीं लगा, तो मैं मेरा इंटरेस्ट ज्यादा गायनेक और इनफर्टिलिटी में था। मैंने सोचा ऐसा मैं कुछ करूं कि लोगों को मैं जिंदगी भर याद रहूं। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन गायनेक इनफर्टिलिटी। सो मैंने 2000 से ज्यादा डिलीवरीज की है और मोर देन 5000 कपल्स कंसीव्ड विथ माई ट्रीटमेंट। सो आई एम हैप्पी इन माई प्रोफेशन। और मैं पुणे में रहती हूँ कैंप में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत प्लीजेंट प्लेस है। सो शॉपिंग और अलग अलग होटल्स यहाँ पे है, और यंगस्टर्स के लिए भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो पुणे इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे मैं सिंस 20 ईयर्स आई एम हियर इन पुणे। थैंक यू सर।
0: अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर रोहिणी क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रोहिणी जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रोहिणी मैम मुझे ये बताएं, आपको गाने का शौक कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: समीर सर जी, गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही है। मेरी मम्मी जो थी उसको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, हालांकि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। किचन में एक हमारे रेडियो रहता था और वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक गाने चलते रहते थे, न्यूज़ चलते रहते थे। तो मेरी सुबह वो गाने से ही प्रार्थना या कोई देशभक्ति पर गाने, इससे होते होते फिल्मी गाने हम सुनते थे। तो ऐसे ही मेरा बचपन था। और मेरी मम्मी कुछ गाना चल रहा है तो वहाँ पे जो आशा जी या कोई भी सिंगर है, लता जी, कोई मुरकी लेते थे, अच्छी तान लेते थे, तो वाह वाह कितना अच्छा गाया। तो ये सब बहुत उसको अच्छा लगता था। ये सब देखते देखते मैं भी बड़ी हो गई और मुझे भी गाने में एक रुचि पैदा हो गई। इस तरह से गाने का शौक बचपन से ही है मुझे सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात है आपने बताया, और बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज किए कि किस तरीके से जब आपके यहाँ पर गुनगुनाया जाता था तो उसकी तान, उसका सुर।
1: मैं बताना चाहूंगी सर, जब मैं लाइक स्कूल गर्ल थी या टीनेज में ही मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम के जरिए ओपी नैयर जी साहब से, रिदम किंग ओपी नैयर साहब से हो,
0: ओ
1: और
0: माय
1: उन्होंने
0: गॉड,
1: मेरा गाना सुना। और गाना सुनने के बाद उनका स्पीच था, उनको वेलकम सॉन्ग था मेरा, गाना सुनने के बाद उनका एक स्पीच था। उसी स्पीच के पहले ही उन्होंने बोला कि ये जो बच्ची अभी गा रही थी प्लीज उसको ऊपर बुलाइए।
0: ओ
1: और
0: माय
1: उसके
0: गॉड,
1: बाद उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सिर्फ उसको एक रियाज की जरूरत है, और आप रियाज करोगे अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरी मम्मी से भी मांगा उन्होंने कि इसे इसे मुझे दे दो, मैं इसे कैसे क्या बना बना दूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, मेरे घर वाले, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ये तो पहले डॉक्टर बनेगी बाद में सिंगर बनेगी। तो इस
0: ओके,
1: तरह से
0: नहीं कोई

बात नहीं मैम, आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो और एक अच्छे सिंगर भी हो, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लियोनार्डो दा विंची के बारे में आपने सुना होगा, वो कितनी सारी कलाओं के जानकार थे। ही वॉज एन आर्किटेक्ट, वो सिंगर थे, म्यूजिशियन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, इसके बाद वो पोएम्स लिखते थे, वो स्कल्पचर्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे। सो बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो एक इंसान के अंदर बहुत प्रतिभाएं हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत खूब। तो डॉक्टर होने के साथ साथ क्योंकि आप एक गायिका भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, सूट करता है, आपकी शख्सियत को बयान करता है, कौन सा गीत है वो?
1: हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग रहती है, दो पर्सनालिटी रहती है, एक तो सेंसिटिव और एक प्रैक्टिकल। तो मैं जब सेंसिटिव हो जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे ये गाना सूट ज्यादा हो जाएगा, जे ये जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ये गाना मेरे पर्सनालिटी को सूट होता है।
0: ओके।
1: उसी के साथ जो गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की

0: ये गाना मेरी पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट होता है।
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: तो
1: प्यारा। आप कुछ कह रही थी
0: बाय
1: आप?
0: नेचर मैं एम्बिशियस भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं जब दूसरों को बहुत हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ, मैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसे कुछ गाने सेंसिटिव रहेंगे तो मुझे लगता है ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है। जैसे कि ये भी है गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर धुएं में उड़ाता चला गया, सो ये
1: ओके,
0: गाना भी मेरे लिए सूट होता है सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने मैम। तो
0: थैंक यू सो मच सर।
1: चलिए दोस्तों, एक गीत सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। रोहिणी जी आगे बढ़ते हैं, आप
1: यस सर बिल्कुल।
0: कुछ कलेक्ट करती हैं क्या, जैसे कुछ भी घड़ियां या कुछ और चीजें? जैसे मुझे जूते इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, तो आज ऐसा कुछ कलेक्शन है आपके पास?
1: हाँ सर जी, मुझे डायरिया जो रहती है वो कलेक्ट करने का बहुत शौक है।
0: वेरी नाइस।
1: इससे पहले बहुत ज्यादा था डायरी लिखना और अलग अलग डायरी खरीदना, उसमें कुछ ना कुछ शेरो शायरी लाइफ के बारे में लिखना। और मैं ऐसे ये करती हूँ कि डायरी एक ऐसा जरिया है जो हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं उसमें। सो कभी डेली रूटीन लिखना उसमें, या मेडिकल रिलेटेड कुछ है तो वो लिखना, सॉन्ग्स लिखना। ऐसे मेरे पास बहुत सी अलग अलग तरह की डायरिया हैं, तो ये मुझे बहुत शौक है। फिर ड्रेस, अलग अलग जैकेट्स, जैसे कोई अच्छा फंक्शन है तो उसी तरीके का ड्रेस पहनना, या कभी फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है तो उसको मैच होने वाला उस तरीके का ड्रेस। तो अलग अलग ड्रेस की कलेक्शन मेरे पास है, तो वो मुझे बहुत शौक है।
0: वेरी
1: यस
0: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।

0: वेरी नाइस,
1: थैंक यू सर,
0: बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपने सुना कि रोहिणी जी को डायरिया इकट्ठी करने का शौक है, जो कि बहुत ही क्यूट एक कलेक्शन हैबिट है, बहुत प्यारा।
1: यस सर।
0: तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: रोहिणी जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, कौन है वो और वो आपके सबसे अच्छे दोस्त क्यों हैं?
1: बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन और स्कूल से भी मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सिंगर्स ग्रुप के अलग, मेडिकल प्रोफेशन, स्कूल, कॉलेज, और उसमें सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरी बहुत से नज़दीकी दोस्त है, मैथिली, मोनिका, और ये सब सुन रहे हैं अभी प्रोग्राम,
0: जी
1: सुचेता, आरती, डॉक्टर मीना जो यहाँ गा चुके हैं, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, संदीप, अनिरुद्ध, और इसके साथ डॉक्टर अभिनंदन और उसकी वाइफ जो डॉक्टर सुजाता है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त है, प्रतिभा, सीमा, स्नेहिल, ये भी अच्छे दोस्त है। ये अच्छे दोस्त मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ये सपोर्टिव है। आजकल के बिजी वर्ल्ड में वो सामने आके कुछ हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कभी हम फोन करेंगे, कुछ एडवाइस उनको पूछेंगे तो बहुत अच्छे एडवाइस भी देंगे, बहुत सपोर्टिव है। कभी हम एक दूसरे के घर जाएंगे तो इतना कुछ वो अपने लिए करते हैं, इतने लवेबल हैं, और एक दूसरे फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की वो हर बार कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है कि आजकल आजकल के बिजी लाइफ में हम एक दूसरे को फोन पे भी बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता सकते, लेकिन कब वक्त आएगा तो ये सब लोग ऐसे हैं कि सबको बोलेंगे कि हम चलो गेट टुगेदर करते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अब तक हमने क्या, इन 4 सालों में क्या किया, 5 सालों में क्या किया, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे क्वालिटीज है और वो मुझे जज नहीं करते किसी तरह से, तो वो सबसे अच्छी क्वालिटीज इन सभी में है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप
1: थैंक यू
0: खुश, आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं कि आपके इतने सारे दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं। और ये दोस्त वो दोस्त नहीं है जो फोन भी नहीं उठाते या फोन पे बात करके खत्म कर देते हैं, ये वो दोस्त हैं जो आपसे मिलते हैं।
1: यस
0: ऑफ कोर्स,
1: यस, मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे।
0: अमेजिंग, बहुत खूब।
1: यस,
0: तो चलिए अगला गीत आपके इन सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं और सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। तो रोहिणी जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: सर, मेरी पसंदीदा गायिका डेफिनेटली आशा जी है। आई लव द वे हाउ शी सिंग्स, और उनकी जो हर गाने में जो हरकतें रहती है, मुर्कियां, हर सॉन्ग में एक एक वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से गाती है। उनका हर एक स्टाइल में मैं बहुत पसंद करती हूँ। और हालांकि मैं लता जी को भी पसंद करती हूँ, बट आशा जी मेरी फेवरेट है। और शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, वो क्लासिकल सॉन्ग्स भी उतने ही अच्छे से गाती है, फिर सैड सॉन्ग्स, गजल्स, कैबरे सॉन्ग्स, डिस्को सॉन्ग्स, सेंशुअल सॉन्ग्स, वो बहुत अच्छे तरीके से गाती है। और अनेक बहुत से लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। और मुझे लगता है सर कि इनकी लाइफ बहुत ट्रेजेडी पूर्ण, मतलब कि बहुत उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन वो ट्रेजेडी किधर भी उनके गाने में असर नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। और हर गाना उनका एक यूनिक रहता है। तो आई लव आशा जी सो मच, और करती हूँ और करती रहूंगी उनके गाने मुझे दिल से।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, सुने एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया रोहिणी जी, ए फन क्वेश्चन, बस यूं ही मजे मजे में, आपकी जिंदगी में सबसे पहली बार कुछ खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज मैंने जिंदगी में पहली बार, मैं जब हम हॉस्टल लाइफ हमारी थी तब हम एक्चुअली हॉस्टल में पहले रह चुके थे, उसके बाद में हम सेपरेट, हम कई फ्रेंड्स सेपरेट एक रूम लिया था 1 BHK फ्लैट, वहां रह रहे थे। तो हर एक का टर्न आता था, जैसे चाय बनानी है तो मेरा भी टर्न आता था, तो चाय बनाना मेरे लिए इतना मुझे मुश्किल लगता था। तो मैंने पहली बार जो चाय बनाई थी किचन ओटे पे बैठ के, कट्टे पे बैठ के, और तभी मैंने वो हर एक चीज, कितनी शक्कर डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स को पूछ पूछ के मैंने वो बनाया था। और मेरी सब फ्रेंड्स लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि एक चाय बनाई लेकिन जैसे तुम्हारे लिए ये रॉकेट साइंस है। सो इस तरह से मैंने चाय बनाई थी और पूरी आधे से ज्यादा वो जल गई थी चाय। तो इस तरह से मैंने मैंने पहला मेरा ये बनाया था, चाय बनाई थी। उसके बाद मैंने दाल भी बनाई थी, तो वो भी दाल का तड़का जो है मैं दूर से ऐसे तड़का लगाती थी और भाग जाती थी और पूरी दाल तब तक जल जाती थी। इस तरह से मैंने ये दो चीजें पहली बार जिंदगी में बनाई थी, दाल और ये चाय,
0: वेरी नाइस nice.
1: जो मेरे फ्रेंड्स अब तक याद रखती है कि चाय कैसे बनाने की। रोहिणी अभी भी तू ओटे पे या कट्टे के, किचन कट्टे पे बैठ के सब बनाती है क्या, वो अभी भी मुझे पूछते हैं फोन करके इस तरह से।
0: आपकी बात सुन के मुझे वो जोक याद आ रहा है जो कुछ शायद साल डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, कि एक बार एक बंदा था, उसकी वाइफ चली गई मायके, तो उसने अपने फ्रेंड को फोन किया कि अरे यार मेरे को चाय बनानी है तो कुकर में कितनी सीटियां दे दूं। तो वो उसके दोस्त ने कहा पागल हो गया क्या, कुकर में बनती है क्या चाय, गधे के बच्चे, कढ़ाई चढ़ाओ।
1: कढ़ाई चढ़ाओ, ओके वाओ, तो उससे भी ज्यादा ग्रेट।
0: हाँ तो आप भी पता नहीं कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया था मैम आपने।
1: मैंने बर्तन तो सही लिया था लेकिन okay. हर एक स्टेप में इतनी पूछी जा रही थी
0: कि मेरे जल गई बेचारी,
1: मैं तो बाबा उतर ही जातू, तू अभी चाय मत बना, अभी वो जल ही जाने वाली है। तो इतनी चीजें, इतना ऐसा नहीं रहता है, इतने तू छोटी छोटी बातें पूछ रही है,
0: बहुत खूब।
1: तो इस तरह से मैंने चाय, जब कभी भी मेरा टर्न आता था मैं किचन ओटे पे बैठ के अगेन एंड अगेन आई यूज टू आस्क देम कि कैसे बनाना है, आगे कैसे करना है। अब तक उनको याद है।
0: सो द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। ओके
1: कुछ
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। आपको और बेहतर समझने के लिए रोहिणी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जाहिर है गाने गाना यही मेरी ज्यादा हॉबी है, गाने सुनना। बट इसके साथ एक अलग हॉबी मुझे ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन नए नए रास्ते ढूंढना, गलियों से ये गली से रास्ता उस गली से जाएगा, वो रास्ता कौन सा रहेगा, फिर कौन सी गली आएगी, तो नए नए स्पॉट ढूंढना, नई जगह ढूंढना, ये मेरी और मेरी फ्रेंड्स लोगों की भी हॉबी थी। तो स्कूल डेज में भी हम साइकिल चलाएंगे, इस गली से कहाँ पे रास्ता जाएगा, तो एवरी डे हम रास्ता ढूंढते थे कि कहाँ जाएगा। ये एक मेरी हॉबी थी, एक अलग हॉबी है ये। और फिर न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी अभी है पुणे में, कि नए तरीके के घर देखना, जाके खुद जाके फ्लैट देखना, किस तरह से ये घर बनाते हैं, कैसा आर्किटेक्चर है, कैसे डिजाइन किया है, इंटीरियर डिजाइन किस तरह से किया है, तो इसमें मुझे बहुत रुचि है। जैसे आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे,
0: जी जी जी
1: तो इस तरह का मुझे भी एक शौक था कि किस तरह से ये होता है, तो ये एक मुझे हॉबी है सर,
0: वेरी
1: आज भी
0: नाइस।
1: मैं वो फॉलो करती हूँ। कभी मुझे वक्त मिलता है संडे सैटरडे, तो मैं वहां जाती हूँ, अलग अलग तरीके के घर देखती हूँ, और पुराने घर भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने वाड़े यहाँ पे है पुणे में, किस तरह से लोग रहते थे, कैसे उनका लाइफ रहता होगा, तो ये देखना भी मैं पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब
1: और एक हॉबी है
0: जी,
1: अच्छे लोगों से मिलना और उनको सुनना,
0: ओके,
1: ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कमाल है, ये सचमुच अच्छी हॉबीज हैं। सिंगिंग तो देखिए वो तो आपकी जिंदगी हो गई, वो तो है ही है, उसको तो आप अपने आप से डिटैच कर ही नहीं सकते। हॉबीज वो होती है जिसमें हम एक अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, अपने वक्त में गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, एक अलग तरीके की हॉबी। अब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी लिसनर, अब कई बार लोग कहते हैं कि व�ॉचिंग क्रिकेट इज माय हॉबी, तो वो बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वॉचिंग क्रिकेट मतलब अगर आप हॉबी की डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में जाके तो वो ये नहीं है। खैर एनीवेज हम जाने देते हैं उस बात को। तो चलिए दोस्तों सुने एक प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: है तो वो ढूंढ निकालना अपना काम है, क्योंकि सभी को थोड़े वक्त के लिए यहाँ जिंदगी मिली है। जब हम इसके बाद भगवान के पास जाते हैं और वो पूछेगा कि आपको मैंने जो स्किल दिया आपका, आपने उसका क्या किया, तो हम कहेंगे, मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बन गई, मैंने ये किया। वो ठीक है, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए किया या लोगों की सेवा की तो अच्छा किया, लेकिन मैंने तुम्हें जो आर्ट दिया था उसका तुमने क्या किया? तो मैं कहूंगी, सपोज मैं कहूंगी अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कर पाई, तो वो कहेगा चलो वापिस आपको एक अगला जन्म लेना पड़ेगा और वो स्किल या आर्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसी जिंदगी में क्यों ना हम ये सब ढूंढ के निकालें। 64 कला है दुनिया में, तो उसमें की एक कला भी हम निपुण उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो, अच्छे से जियो और जीने दो, हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, दोस्तों से मिलते रहो और अपनी जो मन की बात जो है लोगों को, मतलब कि अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। यही जिंदगी है, क्योंकि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, और ये पल जो है वो हम सेलिब्रेट करते जाएं तो जिंदगी बहुत हसीन है। सबको हेल्प करते रहो और एंजॉय करो जिंदगी में, यही मेरा सबके लिए एडवाइस है सर।
1: बहुत सुंदर संदेश, बहुत प्यारा संदेश दोस्तों आपने सुना। डॉक्टर रोहिणी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत बहुत
0: थैंक यू सो
1: शुक्रिया।
0: मच, थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया, आपके पूरे टीम का, राज सर, आप समीर सर और पूरे सुनने वाले ऑडियंस का, सबका शुक्रिया करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू सर।
1: थैंक यू। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आज के कलाकार का लेकर हम हाजिर हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो प्रतिभा हमारे साथ हैं, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो हैं शिव शंकर सर। बाकी हम शिव शंकर सर से ही पूछेंगे कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो शिव शंकर सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों से बात कीजिए, उनको अपने बारे में ये बताइए कि आप कहाँ हैं और क्या करते हैं अभी।
1: थैंक यू जी। हम आई एम वेरी प्राउड टू बी इन द इंटरव्यू विद एसएन रेडियो। हम बेस हैं चेन्नई में, हमारा मातृभाषा है तमिल, लेकिन हम हिंदी सॉन्ग्स पसंद करते हैं। हम यहाँ अभी अपना बिजनेस है यहाँ, और वो जो फिल्टर्स वगैरह बनाते हैं और इंडिया इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं हम। हमारा अपना एक ग्रुप है यहाँ, हम लोग पुराने गाने, गोल्डन पीरियड का गाने बहुत गाते हैं। हमको हमारा फेवरेट गायक है मोहम्मद रफी,

0: कसम किशोर कभी गाना गाते हैं, हम जो आपको भेजे हैं गाना उसमें सब किशोर और रफी साहब का दोनों सबका गाना है। हमने ये एक गाना गाए हैं, वो है आदि बर्मन का फर्स्ट फिल्म, वो है तीसरी मंजिल, वो शमी कपूर और आशा परेख का था, वो गाना था तुमने मुझे देखा। सो ये बहुत बढ़िया गाना है, हमको भी बहुत पसंद है।
1: राइट सर। तो दोस्तों आपने जाना कि शिवशंकर सर कहाँ हैं, वो क्या करते हैं, तो अब सर मुझे बताइए कि हम लोग कौन सा सॉन्ग हमारे सुनने वालों को बताए सुनाएं, जो अभी आप बता रहे थे वही वाला सॉन्ग क्या जो आपने गाया, जो आपने गाया हो?
0: तुमने मुझे देखा,
1: ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है सर?
0: तीसरी मंजिल, और आर डी बर्मन का फर्स्ट डेब्यू म्यूजिक डायरेक्शन है वो।
1: ओके।
0: और आशा परेख और शमी कपूर का
1: फिल्म आया,
0: हीरो हीरोइन से।
1: करेक्ट। सो और दूसरा कौन सा सॉन्ग सर आपका रिकॉर्ड किया हुआ हम सुनवाएंगे अपने दोस्तों को?
0: और दूसरा है एक किशोर का बहुत पॉपुलर गाना है, ए दिल न होता बेचारा। देखिए ये जुअल तीफ का गाया हुआ, किशोर का गाया हुआ एक बहुत बढ़िया गीत है। इसमें एक छोटा सा स्टोरी है, इसका ऑफकोर्स म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन थे। इसमें एक देवानंद और तनुजा थी, और इसमें एक सीन था, ये जो ए दिल न होता बेचारा का, वो एस डी बर्मन को वो ट्यून ठीक से नहीं मिल रहा था, और बहुत झंझट में देखे कैसा ट्यून चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मैंने वो जो टीजिंग ऐसा टाइप ऑफ सॉन्ग है। तो आर डी बर्मन और एस डी बर्मन एक दिन वो एक पिक्चर देखने गए थे, अंग्रेजी फिल्म ए ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय, वो उसमें एक मार्च पास्ट का एक विजिल सॉन्ग था, विजिल नहीं करते हैं लेकिन हम ऐसे

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सर, आपने अभी बातचीत में मुझे ये बताया कि आपका जो संगीत का सफर शुरू हुआ, जब आपने म्यूजिक को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये कौन से साल की बात होगी? व्हेन एग्जैक्टली डिड यू स्टार्ट?
1: आई स्टार्टेड इन 2000 13 साल पहले, तो कितना होता है वो 2019
0: हाँ 13 साल मतलब 2012 हो गया ना अप्रोक्सीमेटली सर,
1: 2012 60 साल से हम चालू किए थे। हम बताए थे आपको कि हमारा 60th बर्थडे में हमारा पहला माइक लेके गाना चालू हुआ, और उस समय हमारा पहला गाना था सफर का, जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: ओके,
1: हमारा बीबीपी बगल में थी, लेकिन उसको वो हिंदी नहीं जानती है, तो इसलिए उसको कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है। लेकिन ये गाना हमने इसमें नहीं डाला है, जो 10 सॉन्ग्स में वो नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते करते हम लोग तो वैसे ही चल रहा है अभी तक।
0: ब्यूटीफुल। तो अगले कौन से दो गाने हम अपने दोस्तों को सुनवाएंगे शिव सर, हमें बताइए ना।
1: अच्छा देखिए, हम लोग पूरा वो हम बताए थे ना गोल्डन पीरियड का गाना, लेकिन हमको एक गाना बहुत पसंद था शाहरुख खान की, हमारा जो अपना रूल को ब्रेक करके हम ये गाना भी डाला है,
0: राइट,
1: वो खल हो ना हो। वो गाना तो सोनू निगम ने गाया है, हमको बहुत पसंद था, हम कोशिश करके ये गाना भी डालेंगे।
0: वाओ,
1: आप इसके बाद वैरायटी के लिए ये तीसरा गाना आप डाल सकते हैं।
0: और चौथा गाना कौन सा होगा सर?
1: चौथा गाना होगा, हमको बहुत पसंद है ये गाना, ये मदन मोहन का कॉम्पोजिशन है, चिराग फिल्म से, सुनील दत्त और आशा परेख, तेरी आंखों के सिवा, रफी साहब ने गाया है, बहुत बढ़िया गीत है वो, हमको बहुत पसंद है, हम तो बहुत बार गाए हैं परफॉर्मेंस में ये, तो ये गाना हम डाले हैं, छोटा गाना,
0: ब्यूटीफुल,
1: बजा सकते हैं।
0: आइए दोस्तों, शिव सर की ही पसंद, शिव सर की ही गायकी, सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दो गीत और फिर शिव सर के पास वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। शिव सर, अभी पीछे आपने बताया कि आपको मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों ही पसंद, लेकिन उनकी आवाज के टेक्सचर में जो फर्क है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा सर कि दोनों में से किसके गीत आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं, और उन दोनों में से जिसके भी गीत आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं, कौन सा गीत है दोनों में से जो आपको सबसे सबसे अच्छा लगता है?
1: दोनों का, लेकिन रफी साहब का थोड़ा ज्यादा और किशोर जी का कम। पहले तो हम किशोर का ही, क्योंकि हमारा वॉइस थोड़ा मैच होता था किशोर का, और हम बहुत माने प्रैक्टिस करके हमारा वॉइस सॉफ्ट किए थे। उसके बाद रफी साहब का गाना भी गाना चालू किया, लेकिन रफी साहब का वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है। किशोरदा ने भी बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। बहुत हमारा एक और बहुत बढ़िया गीत हमने गाया है, बहुत पसंद है हमको किशोर का गाना, वो आप अगले बचा सकते हैं।
0: कौन सा
1: वो
0: सर?
1: है अमर प्रेम से चिंगारी कोई भड़के।
0: ओ वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत है,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया फिल्म था। और आप लोग को सब पता होगा राजेश खन्ना इज द सिंगल बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड।
0: करेक्ट,
1: उसने कंटिन्यूस 14 या 15 हिट्स दिए थे। तो वो अमर प्रेम भी बहुत बढ़िया फिल्म था वो, और ये सीन भी बहुत बढ़िया था, वो छोरा ब्रिज के नीचे था ये शूटिंग।
0: ओके हाँ, नाव में है ये, नाव में बैठ के शूटिंग हुआ है इसका।
1: नाव में, यस करेक्ट।
0: और दूसरा कौन सा सॉन्ग सर हम सुनवाएंगे?
1: उसके बाद रफी साहब का एक गीत बहुत बढ़िया, हमको बहुत पसंद है। देखिए ये तो फिल्म है कश्मीर की कली से,
0: ओके,
1: ओपी नैयर का म्यूजिक में, लेकिन ये तो बाकी सब गानों से ये इतना उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसके इसमें एक्सप्रेशन और रफी साहब ने जो जैसे गाए हैं वो एकदम बढ़िया। ये तो बार में था, तो शमी कपूर वाज ड्रंक,
0: ये दुनिया उसी की, ये मोहब्बत वाला। ऑलराइट, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, क्या बात कर दिया आपने, मजा आ गया। जी बताइए बताइए।
1: अच्छा इसमें एक और चीज है, एक बहुत बढ़िया सैक्सोफोन प्लेयर है मनोहरी सिंह।
0: ओ
1: तो मनोहरी सिंह ये वो आदि बर्मन और सबके साथ वो काम करते थे, लेकिन ये गाना में उनका सैक्सोफोन बहुत बहुत बढ़िया था। ये दुनिया उसी की, ब्यूटीफुल सॉन्ग, हम बहुत बहुत पसंद किए थे। और शमी कपूर ने अच्छा भी एक्टिंग किया था वो सीन में।
0: ब्यूटीफुल। आपको सच बताऊं सर, पर्सनली मेरे को ये पूरा सॉन्ग और इसकी पिक्चराइजेशन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कई बार जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनकी सोच के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि सोचिए ना, देर वर ओनली थ्री पीपल इन दैट बार। शमी कपूर थे, एक बार टेंडर थे और एक सैक्सोफोन बजाने वाले थे, देर वर ओनली थ्री।
1: और एक आर्मी कर्नल,
0: हाँ एक आर्मी कर्नल था जो बगल में बैठा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देर वर ओनली फोर। एंड ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गाने में सिर्फ सैक्सोफोन ही बजाए और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, इट इज सो ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों, फिर दोनों ही बहुत ही खूबसूरत से गीत हम लोग सुनते हैं शिव सर की ही आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूब।

0: क्या बात है शिव सर, अमेजिंग अमेजिंग गायकी, और आपके तो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स आर एक्सट्रीमली गुड, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: चलिए
1: हम लोग आप
0: जी बोलिए बोलिए सर,
1: बोलिए बताइए।
0: इट्स ओके। होता क्या है सर कि आपको समझने के चक्कर में मैं और जितना भी आपके बारे में जान लूं, जैसे कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी पता चल जाए अपने आप को और हमारे सुनने वालों को भी मालूम पड़ जाए, उसकी कोशिश में रहता हूं। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप तो इतने सालों के अनुभवी इंसान हैं, तो हमको कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। अगर मैं आपके बारे में किसी को बताऊं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन मैं उनको कैसे दूं?
1: एक हैप्पी गो लकी हार्ड वर्किंग इंसान है, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिविटी हमारा लाइफ में नहीं है। मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन होता ही है, लेकिन हम ऑलवेज पॉजिटिव थे।
0: wow.
1: और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, मैंने काम करते चलो, कोशिश करते चलो, म्यूजिक या करियर जो भी हो, और जो करते हैं उसको एंजॉय करो, वही हम बता सकते हैं।
0: wow. That's so beautiful. तो जाहिर से बात है, बहुत ही खूबसूरत सा एक इंट्रोडक्शन शिव सर का मैं किसी को भी देना चाहूंगा कि टोटल पॉजिटिव इंसान, टोटल पॉजिटिव। सो आपको उनसे बात नहीं भी करनी है ना, तो मत करिए, बस उनके अगल बगल रहिए। उनके अगल बगल रहने से ही इतनी पॉजिटिविटी रेडिएट करके हमारे पास आ जाएगी कि हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी दोस्तों। चलिए शिव सर, प्लीज मुझे बताइए ना, कौन सा नया गीत, कौन सा गीत हम दोनों दो गीत हम सुनवाएंगे हमारे दोस्तों को?
1: अरे थोड़ा एक मिनट सर।
0: श्योर। अरे कोई टेंशन नहीं सर, मैं भी अपनी डायरी सामने रख कर ही बैठता हूँ, आप भी अपनी डायरी, सब लोगों को, मोर ओवर मैं तो कहूंगा सब लोगों को अपनी अपनी डायरीज अपने सामने रखनी ही चाहिए। कीप अ पेन रेडी, कीप ऑन राइटिंग।
1: उसके बाद अच्छा एक किशोर का मेडली भी हम भेजा है, सुनाई पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये किशोर का टॉप मैंने
0: यूडलिंग का है
1: सर। मैंने मेडली आप जानते हैं ना, छोटा छोटा पोर्शन, हर एक सॉन्ग का छोटा छोटा पोर्शन है।
0: अच्छा okay.
1: और मेडली तो दो गाने खट्टी पतंग से और दो गाने मेरे जीवन साथी से, दोनों आर डी बर्मन का बनाया गया, टॉप पॉपुलर सॉन्ग्स। तो हम लोग ये भी उसमें डाले हैं।
0: तो क्या नाम क्या है जी?
1: एक है कटी पतंग का पेशा मस्तानी, और मेरे जीवन साथी का क्या गाना है वो टक।
0: तो ये शाम मस्तानी के साथ ही दूसरा वाला सॉन्ग जुड़ा हुआ है, आप ऐसा कह रहे हैं?
1: हाँ।
0: ऑलराइट,
1: मैंने दो गाना पाटी पतंग से और दो गाना मेरे जीवन साथी से।
0: ओके,
1: वो भी है, वो सुना है, वो भी सुना सकते हैं, वो तो अच्छा गाना है।
0: नहीं मेरी तो बात,
1: एक मिनट आप वेट कीजिए।
0: श्योर आराम से सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: हाँ, वो मेरे दिल के चैन और वो मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और दीवाना लेके आया है वो भी है।
0: ओके सर,
1: तो यही है चार गाना, तो एक सुनाइए।
0: एक तो है सर, आपने बताया मुझे ये शाम मस्तानी, और एक है मेरे जीवन साथी, दूसरा है वो मेरे दिल के चैन, एंड दीवाना लेके आया हूं, ठीक है ना सर?
1: यस,
0: ये मतलब जॉइंट हैं, राइट सर?
1: एक से एक, मैंने एक एक मैंने छोटा पोर्शन आता है, उसके बाद ट्यून बैकग्राउंड म्यूजिक बदल जाती है,